यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि। तदनुसार 13 मई 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकेंड्स हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम TVK सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब TVK के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल

भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, हम अपनी मातृभूमि को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देश की वंदना करते हैं।

श्रोताओ, समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये मात्र वंदना। आपको बता दें कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक भजन आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, आपको बता दें कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। हरिओम शरण की आवाज में एक भजन आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये भजन। लीजिए सुनिए।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की गाई इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम चिंतन का, और चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है अपरिग्रह। आलेख श्री ब्रजेश श्रीवास्तव का है और वाचक है श्री राजेंद्र कुमार। लीजिए सुनिए।
1: जीवन चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना प्रत्येक अच्छे गृहस्थ का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में अपरिग्रह का क्या अर्थ और क्या आवश्यकता है, क्योंकि परिग्रह का अर्थ है

0: केवल देखा देखी में हम अनावश्यक भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठा करते जा रहे हैं। ऐसे में अपरिग्रह को ठीक से समझने की और भी जरूरत है। वैसे हमारे शरीर की आवश्यकताएं कम हैं। वस्तुएं श्रेष्ठ डिजाइन की हों, ब्रांड की हों, महंगी हों, ताकि हमारी अलग पहचान दिखे, यह मांग तो हमारे मन की होती है। फिर इनकी भी क्या कोई सीमा है? यहाँ भी मन की आसक्ति, लालच, दूसरों से ऊंचा दिखने का अहंकार आगे रहता है। हर माह बदलने वाले फैशन के कारण हमारे पास कितनी कमीजें, जूते, साड़ियां, मोबाइल व गाड़ियां इकट्ठा होती जाती हैं। हमारी इस मनोवृत्ति का दूरगामी बुरा प्रभाव पड़ता है, ये हम नहीं जानते। इसके कारण महंगी वस्तुएं और महंगी होती हैं, जबकि सस्ती वस्तुएं मांग कम होने से मिलती ही नहीं। महंगी वस्तुओं की इसी लालसा के कारण ऊंचे वर्ग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसकी देखा देखी मध्य व निम्न वर्ग में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस प्रकार अपरिग्रह का पालन नहीं करने से गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता जाता है। धर्मशास्त्र में इसीलिए मनु ने अपरिग्रह को व्यक्ति के समाज के प्रति आचरणों में प्रमुख स्थान दिया और घोषित किया कि आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण ही सबसे पहला धर्म है। यदि कोई कहे कि यह कैसे हो सकता है, भगवान की सेवा पूजा ही असली धर्म है, तो धर्मशास्त्र में समाज के प्रति आचार की 5 बातों को शामिल करते हुए जो आचरण संहिता बनाई है उसे यम कहा गया है। अपरिग्रह सहित ये यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मात्र निजी पूजा पाठ को धर्म नहीं माना। बुद्धिमान को चाहिए कि वो केवल निजी पूजा पाठ रूपी नियम का ही पालन नहीं करे, यमों का भी नियमित पालन करे। जो केवल नियम का ही तो पालन करता है और यम का नहीं, वो धर्म से गिर जाता है। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक होने के कारण इन यमों को सभी देश सभी काल में आचरण योग्य कहा गया है। अपरिग्रह सहित इन 5 यमों का महत्व दुनिया को खुशहाल शोषण मुक्त बनाने में तो है ही, हमारे आत्म उत्थान भी इनके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि हम आध्यात्म में विराट विश्व की आत्मा से जोड़ने की बात करते हैं, तो पहले समाज से जोड़ना होगा। इसीलिए पतंजलि ने योग सूत्र में ईश्वर रूपी छत पर पहुंचने की जो 8 सीढ़ियां बनाई हैं, उनमें यम पहली सीढ़ी है, नियम दूसरी, और आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। महावीर स्वामी ने तो जैन धर्म में अपरिग्रह सहित 5 यमों को धर्म की आधारशिला ही कहा है। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर अपरिग्रह की छोटी सी पहल की बड़ी महिमा है। ये समाज में विषमता को कम करती है और आत्म कल्याण भी।
1: अपरिग्रह। श्रोताओ, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख श्री ब्रजेश श्रीवास्तव का था और वाचक थे श्री राजेंद्र कुमार। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस। स्वर दे रहे हैं उत्तरा केलकर और सुरेश।

अयोध्या वासियों को राजा श्री राम ने जो उपदेश दिए उन्हें भक्तजन राम गीता की संज्ञा देते हैं। हनुमान तथा अपने तीनों भाइयों को संत असंत के लक्षण बताकर श्री राम ने नगर निवासियों को नीति परक उपदेश दिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, ये साधना का माध्यम और मोक्ष का द्वार होता है। जिसने

अपने परलोक की चिंता नहीं की, उसे अंततोगत्वा पछताना पड़ता है। वो काल, कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। हे नगरवासियों, ये शरीर विषयों का भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। विषय वासना में इस तन का उपयोग करने वाले मूर्खतावश अमृत को विष में बदल देते हैं। माया के वशीभूत प्राणी काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण अवगुणों से घिरा अनंत काल तक भटकता रहता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। स्वर दे रहे थे उत्तरा केलकर के साथ सुरेश वाडकर। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, कृषि समय के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, इस विषय पर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है। यहाँ तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, जैसे pH मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इन सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो NPK का होता है। इसके अलावा NPK के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियाँ या कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जाँच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किन की कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5 जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास के अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम बेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज़्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे जो है ना आपके फल ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, या स्प्रे भी किया जा सकता है इनका। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे, जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
0: टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से जानकारी, और इसके साथ ही कृषि समय की कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज सुबह 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज हम आपको नरेंद्र सिंह राहुल और साथियों के अलावा अनिल दंडौतिया के गाए लोकगीत सुनवाएंगे। आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, और सुबह 10 बजकर

30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन, बेटा बेटी एक समान और कृषि में आधुनिक तकनीकें अपनाएं, इन विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। इसके अलावा आज आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता, जोड़ों का दर्द कारण लक्षण और उपचार, जोड़ों का दर्द कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर पंकज शर्मा से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की बातचीत। श्रोताओं, अब हम आपको उन कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं जिनको हम अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, हिंदी में समाचार सुनिएगा सुबह 7:00। आज सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, आज सुबह 8:00 समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह 8:15 पर। आज सुबह 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00 से लेकर दिन में 12:25 तक, उसके बाद दिन में 12:30 से दिन में 1:27 तक, इसके बाद दिन में 1:30 से लेकर आप दिन में 3:00 तक और फिर शाम 5:00 से। श्रोताओं, इसमें आपको मुख्य रूप से हम आपको बता देते हैं, आज दिन में 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, लोक संगीत दिन में 1:30 पर, सुगम संगीत दिन में 1:45 पर और शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी। महिला कार्यक्रम, लोक संगीत, सुगम संगीत और कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर समाचार सुनिएगा आज दिन में 2:15 पर। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 2:30 से 3:00 तक। आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम होंगे आज शाम 6:10 से शाम 6:30 तक। समाचार संध्या रात 8:45 पर और रात 9:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ, सुबह के 6:55 होने को कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कुछ स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों का विवरण हम आपको दे रहे हैं।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:05:50 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। श्रोताओं, जल संरक्षण आपने बहुत जगह ये बात देखी होगी, सुनी होगी और अक्सर बातचीत में हम बात भी करते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है और जल है तो जीवन है और जल है तो ही ये दुनिया है। श्रोताओ, हम बार बार इस बात पर ध्यान देते हैं, बार बार इस बात का अनुरोध करते हैं और बार बार ये चेतावनी भी देते हैं कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें बचाकर रखना चाहिए और यह बात हमें बार बार कहनी पड़ती है। अब बात जब जल की हो रही है, पानी की बात हो रही है, तो जल एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो सीधे सीधे हमें वर्षा से प्राप्त होता है और वर्षा के जल को संरक्षित करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जल सिर्फ प्राकृतिक स्रोत के रूप में प्राप्त है,

जल के बिना इस ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर जो जीवधारी और वनस्पति है वो सिर्फ जल की वजह से ही अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जल की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसे हम अगर हम सबसे पहले हम वनस्पति की बात करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे छोड़ी गई ऑक्सीजन हम जीवधारियों को प्राप्त होती है, जिस ऑक्सीजन से हम जीवित हैं, और बदले में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, देखिए आप प्रकृति का समायोजन और प्रकृति का संतुलित, कैसे प्रकृति अपने आप को संतुलित रखती है, जीवधारियों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, पेड़ पौधों का हरा रंग जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है, इन चार तत्वों की उपस्थिति में एक जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सूर्य का प्रकाश, इनकी उपस्थिति में जो ब्रह्मांड की वनस्पति है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और साथ ही इस पूरे पर्यावरण में, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जीवधारियों के लिए, जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित होता है। सूर्य प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पर उपलब्ध है और उसकी उपलब्धता का उपयोग जीवधारी और वनस्पति, पहले वनस्पति अपने हिसाब से, अपने अनुमान से, अपने रासायनिक क्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, और बदले में हम ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए जल एक प्रमुख और आवश्यक तत्व है और एक आवश्यक कारक है जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड में हम और वनस्पति जीवित है। इसलिए जल का संरक्षण करें। तो श्रोताओ, जल संरक्षण विषय पर अभी आप सुन रहे थे यह लघु वार्ता। सुबह के 7:10 होने को है, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नहीं होगी वाहन रैली, कारकेड भी छोटा रहेगा। आज प्रदेश की 1,25,00,000 लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 1,835 करोड़ रुपए। प्रदेश में 1,84,00,000 से अधिक मकानों की गणना पूर्ण और प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी। आज 12 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने स्थानीय दौरों के दौरान काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों की वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर लिया है। राज्य शासन द्वारा कल जारी आदेश में कहा गया है कि ईंधन की बचत और सादगी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी न्यूनतम वाहनों के उपयोग की अपील की है। साथ ही आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का आग्रह किया है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप

0: से संभाला है और यह सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और कुल नुकसान करीब 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
1: एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल फ्रांस के राजदूत थियरी माथू सहित इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित 8 अभिरुचि पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किए गए। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनंतिम अनुमानों और चौथी तिमाही के जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान 12 मई से 21 जून तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल आयुष विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि
2: शरीर में योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग, योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल प्रदेश भर में लगने वाले हैं। इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बना करके इस पे काम करने का निर्णय किया है। उससे आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को महत्व देना पड़ेगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जारी है। इस अभियान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार एवं अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। सचिव गृह विभाग और नोडल अधिकारी जनगणना शिल्पा गुप्ता ने बताया कि राज्य में जनगणना कार्य के लिए 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें प्रगणकों द्वारा व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। 12 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,84,92,860 मकानों की गणना पूर्ण की जा चुकी है।

रायसेन जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी। इसमें अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55,926 करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 में 4,000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता KGP-12 के 4 शावक कल सुबह एक मांद के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुनो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे, वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विधाओं के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया, शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:21 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता जी के गाए इस गीत से।

इस जमाने में इस

महबूब की मेहंदी। श्रोताओ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता जी को। गीत आनंद बख्शी, कथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता जी का गाया एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत एक बार फिर आनंद बख्शी साहब का है और फिल्म का नाम है आशा।

आशा फिल्म में लता जी को अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं।

आरजू फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता जी को, गीत हसरा जयपुरी, कथा संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता जी का गाया एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत अनजान साहब की रचना है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए।

मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में लता जी के गाए और गुलजार साहब के लिखे इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 7:45 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और अपने सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी में जब भी कभी अवसाद की स्थिति पैदा हो या जब आप डिप्रेशन में हो, तब आप उस कारण को खोजिए कि आप किस कारण से डिप्रेशन में हैं, किस कारण से आप अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। तब आप अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिश्तेदार को या दुनिया में आपको जिससे आपको बात करना अच्छा लगता हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जो मदद करने में आगे रहता हो, उस व्यक्ति से अपनी समस्या का जिक्र कीजिए कि आपको इस तरह की परेशानी है, आपको इस तरह का कष्ट है, या आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भीषण से भीषण, खराब से खराब परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को उन परिस्थितियों से उबार कर बाहर किया है। श्रोताओं, आज मैं एक महान प्रकृतिवादी वैज्ञानिक बैप्टिस्ट लेमार्क की चर्चा यहां पर करना जरूरी समझता हूं। बैप्टिस्ट लेमार्क ने एक किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि जातियों का उद्भव। उस किताब में जो उन्होंने जोर दिया है, जिस बात पर जोर दिया है, वो दो बात आपको अवश्य रूप से बताऊंगा। पहले उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में यदि संघर्ष नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन में उत्परिवर्तन भी संभव नहीं है। यदि जीवन में संघर्ष है और संघर्ष के दौरान उसने, यदि उस व्यक्ति ने या उस जीवधारी ने प्रकृति में अपने आप को स्थापित करने के लिए जितने सारे संघर्षों को जन्म दिया और उन संघर्षों के जन्म के उपरांत

अपने आप को जब उस माहौल में समायोजित कर लेता है, तब वह अपने आप को उस वातावरण में जीवन जीने योग्य बना लेता है और उस वातावरण का उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर वहां बैप्टिस्ट लेमार्क ने कहा कि प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और वही वातावरण और वही जो एनवायरमेंट है आपके आसपास का, उसका प्रभाव आपके ऊपर जीवन भर रहता है, और उस वातावरण के प्रभाव से आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके व्यक्तिगत तौर पर जो आप अर्जित करते हैं, वो अर्जित उपार्जित लक्षण आपकी वंशागति में तब्दील हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण बात कही थी। तो श्रोताओं, सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को यह कहना चाहता हूं कि जीवन में जब कभी अवसाद की स्थिति हो, डिप्रेशन की स्थिति हो, तो अपनों को ढूंढिए, अपनों को खोजिए, अपनों से बात कीजिए। हो सकता है कि आपके जीवन का कोई रास्ता निकल आए जो आपको एक बेहतरीन जीवन जीने का अनुभव प्रदान करता हो। श्रोताओं, हम अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में आपको लगातार बताते रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी 12th की परीक्षा पास की है। 12th की परीक्षा पास करने के बाद वे ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन लेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल पर यदि वह, जैसे 12th की परीक्षा में उसने जिस फैकल्टी से पास की है, अगर वह सेम फैकल्टी में एडमिशन ले रहा है तो उसे कुछ नहीं करना, लेकिन यदि वह फैकल्टी को बदल रहा है तो उसे जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष एक साक्षात्कार देना होगा। यह हमने बहुत विस्तार से यह बातचीतें बताई हैं आपको। ये पूरा इसका एक जो पूरा सेगमेंट है, ये सारी चीजें हमने अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में विस्तार से बताई हैं। अभी हम आपको फिर बता रहे हैं कि यदि 12th की परीक्षा किसी बच्चे ने साइंस फैकल्टी से की है, साइंस में बायोलॉजी भी हो सकती है और मैथ भी हो सकता है, साइंस फैकल्टी से 12th की परीक्षा पास करने के उपरांत जब वह ग्रेजुएशन लेवल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है और वह अपनी फैकल्टी को बदलना चाहता है, जैसे कि साइंस का कोई स्टूडेंट कॉमर्स फैकल्टी में जाना चाहता है या आर्ट फैकल्टी में जाना चाहता है, तो उसे करना क्या है? उसे एक सिंपल आवेदन पत्र लिखना है अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य के नाम, और शिवपुरी का जो अग्रणी महाविद्यालय है वो हम आपको बता रहे हैं कि शिवपुरी का साइंस कॉलेज, जिसे हम पुराने नाम से जानते हैं साइंस कॉलेज के नाम से, तो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय या पीएम श्री महाविद्यालय के प्राचार्य हैं डॉक्टर पवन कुमार श्रीवास्तव। अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम एक आवेदन लिखिए, उसमें बताइए कि मैंने 12th की परीक्षा इस फैकल्टी से पास की है और अब मैं इन कारणों से इस फैकल्टी बदलना चाहता हूं, मैं साइंस फैकल्टी से आर्ट फैकल्टी में आना चाहता हूं या कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहता हूं। और श्रोताओं, साक्षात्कार की मैं आपको अंतिम तिथि बता दूं, आज है 13 मई 2026, अंतिम तिथि है 14 मई 2026। तो कल का दिन और शेष है आज के दिन के अलावा। आप आज भी दिन में 11 बजे से 2 बजे के मध्य एक आवेदन लेकर, उसके साथ सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट है तो वो लगा दीजिए, और अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार श्रीवास्तव के समक्ष उपस्थित होइएगा। वह और उनकी कमेटी जो है, उस कमेटी में कौन कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो उन कमेटी के समक्ष आप उपस्थित होइए, साक्षात्कार दीजिए, और साक्षात्कार के उपरांत यदि आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं, पात्र होते हैं, तो आपको अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य पात्रता प्रमाण पत्र 3 प्रति में जारी करेंगे। प्रथम प्रति जो होगी वो महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी, द्वितीय प्रति जो विद्यार्थी साक्षात्कार दे रहा है उसके पास रहेगी, और तीसरी प्रति कुल सचिव सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन को प्रेषित की जाएगी। अब इस जो पात्रता प्रति है उसको आपको क्या करना है, वो आपको सुरक्षित रखना है। एडमिशन के समय में जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, डाउन

0: डाउनलोड करके सबमिट करेंगे तब आप उस पात्रता प्रमाण पत्र को उसके साथ लगाएंगे। उससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि इसको फैकल्टी बदलने की पात्रता है। श्रोताओं, इसी तरह का सेम जो है स्नातक से स्नातकोत्तर में भी है कि जो माइनर और मेजर का जो प्रश्न है, तो मेजर और माइनर के जो सब्जेक्ट है यदि आप बदल रहे हैं मेजर से, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन में मेजर में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है और वह व्यक्ति वह स्टूडेंट पीजी में जाकर सोशियोलॉजी से या हिस्ट्री में वो पीजी करना चाहता है तो उसकी फैकल्टी बदलेगी। माइनर सब्जेक्ट बदलेगा तो माइनर और मेजर सब्जेक्ट को बदलने के लिए भी उसको पात्रता परीक्षा देनी होगी। और ऐसे परीक्षा जो बच्चे हैं वह भी अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष उपस्थित हों 11 बजे से 2 बजे तक। आज है 13 मई, कल अंतिम दिनांक है 14 मई, उसके बाद ये सारा जो सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल आवेदन देकर आपको साक्षात्कार देना है। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जो साक्षात्कार कमेटी है उसमें नोडल है डॉक्टर अरविंद शर्मा और समिति के जो सदस्य हैं डॉक्टर विकास, डॉक्टर राघवेंद्र गर्ग, प्रोफेसर वीरेंद्र कौशल, डॉक्टर हरीश अंब और डॉक्टर रामजी दास राठौर, इन सब की उपस्थिति में आपका साक्षात्कार होगा और आपको अंतिम रूप से पात्र घोषित कर दिया जाएगा फैकल्टी बदलने के लिए। तो यह सूचना उन बच्चों के लिए है जो फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं। श्रोताओं नमस्कार, शुभ्री कार्यक्रम अभी जारी है और अब हम आपको एक ऐसी विशेष जानकारी दे रहे हैं जो सारे जो इस समय जो भी श्रोता सुन रहे हैं, जो भी विद्युत उपभोक्ता है, उनके बहुत काम की है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, श्रोताओं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो भोपाल है, इसका मुख्यालय जो है, जो कंपनी है इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसके प्रबंध संचालक हैं माननीय श्री ऋषि गर्ग, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग साहब ने इस क्षेत्र के यानी कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत दो जोन आते हैं, भोपाल जोन और ग्वालियर जोन। तो इन दोनों क्षेत्रों के जितने जिले हैं, जैसे हम ग्वालियर जोन की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, इन सभी जिलों में एक विद्युत उपभोक्ताओं के हित में संपर्क अभियान चलाने की घोषणा की है और इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और श्रोताओं आपको बताऊं कि उन विद्युत उपभोक्ताओं को अब बहुत राहत मिलने वाली है इन संपर्क शिविर से, क्योंकि ये कल से शुरू हो रहे हैं, 14 मई 2026 से ये शुरू हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो इस कंपनी के माननीय एमडी श्री ऋषि गर्ग साहब की एक सोच है कि विद्युत उपभोक्ताओं के समक्ष हमारी कंपनी के प्रतिनिधित्व को जाना चाहिए, यानी कि जब हम शिविर लगाकर बैठेंगे और हमारे वहां अधिकारी बैठेंगे तो जनता का जो आदमी वहां अपनी समस्या को लेकर आएगा उस समस्या का निराकरण त्वरित वहीं पर उसी हेल्प डेस्क पर किया जाएगा। अब समस्याएं सुन लीजिए, समस्याएं आदमी को, सबसे पहली समस्या यह है कि उसका लोड नहीं बढ़ रहा है, दूसरी समस्या उसको यह है कि उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तीसरी समस्या उसके साथ यह है कि उसके बिल में कुछ गड़बड़ है, उसकी जो बिलिंग की गई है उसमें हो सकता है आकलित खपत जुड़ी हो और उसके मीटर में रीडिंग कुछ और हो और आकलित खपत जोड़कर आपको रीडिंग का विदाउट रीडिंग का बिल दिया गया हो। श्रोताओं इस तरह की जो आम समस्याएं हैं उन समस्याओं में हो सकता है किसी ने डिजिटल माध्यम से पेमेंट किया हो, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि बिल में सुधार की प्रक्रिया है, भुगतान की सुविधा है, नया कनेक्शन है, लोड में परिवर्तन है, नाम परिवर्तन है, एनओसी का अनुरोध है, ई केवाईसी की समस्या है या मीटर से संबंधित कोई समस्या है, सर्विस केबल की समस्या, विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायत, डीटीआर संबंधी शिकायत और इसके अलावा भी यदि आपकी कोई शिकायत है तो हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शुपरी वृत्त की ओर से कि आपकी समस्या का निराकरण उस हेल्प डेस्क पर तुरंत किया जाएगा। और जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि किसी के बिल में आकलित खपत जोड़ी हुई है। श्रोताओं, आकलित खपत कब जुड़ती है? जब आपका मीटर बंद हो। तो यदि आपका मीटर बंद है तो तुरंत आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, या 14 मई से, जो कल से संपर्क अभियान शुरू हो रहा है। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि कल गांधी पार्क मैदान में ये संपर्क शिविर शुरू होगा, और इस शिविर में आप जाकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था विद्युत बिल की। यदि विद्युत बिल में आकलित खपत का बिल आपको दिया गया है और मीटर आपका चल रहा है और रीडिंग बता रहा है, तब आपको आकलित खपत का बिल नहीं दिया जा सकता। आप अपने मीटर की रीडिंग का वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए और उसका प्रिंटआउट निकालकर उसे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, एक आवेदन दीजिए। आपके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस कंपनी के एमडी साहब की सोच यह है कि जब विद्युत उपभोक्ता आपके पास आएगा तब उसकी समस्या का निराकरण त्वरित रूप से किया जाना आवश्यक है। इसी सोच के साथ हम इस सूचना को अब यहीं विराम देते हैं, और अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
3: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बता

0: बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N. रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPI-M State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office and secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.

आशिकी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार शानू की आवाज में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, हाजी सोनू मार्केट शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक सदस्य, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके तमाम मित्रगण। श्रोताओं, इन सबकी फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का गीत। फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक ब्रेक के लिए रुक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे श्रोताओं, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं उसे सुनने की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरबाड़े, ज्योति नरबाड़े, आकांक्षा नरबाड़े, आकाश कुमार नरबाड़े और इनके तमाम मित्रगण, हाजी सन्नू मार्केट शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और इनके सभी पारिवारिक मित्रगण, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको श्रोताओं एक कव्वाली सुनवा रहे हैं। मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में रफी साहब, बलवीर और साथियों की गाई ये कव्वाली, शब्द रचना कैफी आजमी साहब की, फिल्म का नाम हंसते जख्म।

मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी साहब, बलवीर और साथियों की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म की ये कव्वाली। इसे लिखा था कैफी आज़मी साहब ने। श्रोताओ, आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मस्ती फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं आनंद राज आनंद की आवाज में। गीत समीर का है, संगीत स्वयं आनंद राज आनंद ने तैयार किया है और श्रोताओं इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जीतेक बिरक मीका बिरक और पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू जाजोरिया इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। सदर बाजार टेकरी रोड शिवपुरी से यशवंत जैन सुनील जैन अक्षत जैन पंकज जैन विनोद शर्मा प्रदीप शुक्ला गगन भार्गव सुनील शर्मा राजेश भार्गव और उनके तमाम मित्रगण, इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मस्ती फिल्म का ये

0: मस्ती फिल्म अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद को। श्रोताओं आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया।

0: अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
0: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं इस गीत से। इसे सुनने की फरमाइश की है फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हाजी सन्नू मार्केट शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण। इन सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति

मस्ती फिल्म में आनंद राज आनंद के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको नरेंद्र सिंह राहुल और साथियों के अलावा अनिल दंडौतिया के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं नरेंद्र राहुल और साथियों के गाए इस

नरेंद्र राहुल और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। नरेंद्र, राहुल और साथियों की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नरेंद्र राहुल और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओ, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनिल दंडोतिया की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

0: अनिल दंडोतिया की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनिल दंडोतिया की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

अनिल दंडोतिया के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत हम जिस गीत से कर रहे हैं उस गीत को सुनने से पहले हम गीतकार के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं और बताना इसलिए भी लाजमी है कि जब आप थोड़ा सा मन के अंदर एक विचार कीजिए, जब कोई बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो बच्चा किस विचारधारा का होगा, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, क्या काम करेगा, ये सारी बातें जो है उस बच्चे के माता पिता के मन में होती हैं। माता पिता के मन में एक विचार होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या जिस तरह की भी बातें उस बच्चे के माता और पिता के अंदर से आती हैं। श्रोताओं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कह पाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते। हम कह नहीं पाते ऐसी ही कुछ बातों को मन में रखे हुए अपनी हसरतों के साथ जब जयपुर से हसरत जयपुरी साहब मुंबई आए तो बहुत सारे मन के अंदर ख्याल थे। उनके अंदर जब बचपन में ये ख्याल आया कि मैं जब बड़ा हूं या किशोर उम्र में हूं तो मेरे जन्मदिन पर कोई मुझे इस तरह की दुआएं दे, कुछ उनके मन में आया। और एक बार उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी ऐसी कि ऐसी पहुंच तो नहीं पाई क्योंकि उस समय चिट्ठी का पहुंचना बड़ा कठिन काम था, लेकिन लिखी गई। हसरत जयपुरी साहब के साथ एक चिट्ठी हसरत जयपुरी साहब ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी उनके मन ही मन में रहती हुई और वो चिट्ठी लेकर मुंबई तक आ गए। उस चिट्ठी में जो गीत लिखा गया था श्रोता, उसका इस्तेमाल राज कपूर साहब ने अपनी संगम फिल्म में किया था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो। और श्रोताओ, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी जन्मदिन पर एक बात अपने मन से मन में सोची थी कि कोई उन्हें इस तरह की दुआएं दे। तो एक दुआ भरा एक जो गीत है वो आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए।

0: आई मिलन की बेला। श्रोताओं, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता जी को। गीत हसरत जयपुरी साहब का था और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, बोडसुरा नैला महाराष्ट्र से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत?
2: बताए कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
2: वो भी जांच कर।
1: हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए

जंगल लव। श्रोता, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के साथ मनहर उदास को। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीए, तन्मय गजबीए, बेबी अनिष्का, राधिका गजबीए और उनके तमाम मित्रगण, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और इनके तमाम मित्र, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, इन सबकी फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे जंगल लव फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे बात की थी हसरत जयपुरी साहब की। हसरत जयपुरी साहब के मन में बचपन से ही इतनी सारी बातें उमड़ती रहीं दिल के अंदर, मन के अंदर और मस्तिष्क के अंदर, और उन सब बातों को लेकर जब हसरत जयपुरी साहब जयपुर से मुंबई पहुंचे तो फिर वहां उन्होंने उन सब बातों को उड़ेलना शुरू किया, और उसी उड़ेलने के क्रम में हमने आपको एक गीत सुनाया था कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। श्रोताओं, मन की कुछ अंतर आत्मा की कुछ बातें होती हैं जो कवि मन अपने लेखनी से प्रदर्शित कर देता है, बाहर उतार देता है, मन में उतार देता है, दिमाग में और मस्तिष्क में उतार देता है, और कुछ बातें, कुछ बोल ऐसे होते हैं जो दिल के अंदर उतर जाते हैं। दो बोल कह के हम

राधा का संगम। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता जी के साथ कीर्ति कुमार को। गीत हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुत

इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके पारिवारिक मित्रगण।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइशी। यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इसका अनुप्रसारण
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर नवनीत चौबे। अनूपपुर जिले में मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकट राव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वन कर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉइस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजाति युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारन सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई, जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12,000 से 15,000 रुपए तक का खर्च आता था। वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1,200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नव निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ICU कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अनूपपुर में 3 मतदान केंद्र और कोतमा व राजेंद्रग्राम में 1-1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जैत हरि अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर नवनीत चौबे का। मीडियम वेव डीटीएच।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओ, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सोमेश कुमार की आवाज में गालिब साहब की लिखी कुछ सुप्रसिद्ध गजलें सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गजल से, दिले नादान तुझे हुआ क्या है।

गालिब साहब की लिखी और सोमेश कुमार की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गजल। सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक ब्रेक के लिए रोक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको गालिब साहब की लिखी और शोमेश कुमार की गाई गजलें सुनवा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सोमेश कुमार की आवाज में सुनिए गालिब

गालिब साहब की लिखी और सोमेश कुमार की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत से।

अमर अकबर एंथोनी। श्रोताओं, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी रफी साहब के साथ किशोर कुमार, मुकेश, लता जी। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन में सुनवा रहे हैं। रफी साहब के साथ आशा जी और शैलेंद्र सिंह। फिल्म का नाम सुहाग।

सुहाग फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ आशा जी और शैलेंद्र सिंह को, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। मेरा गांव मेरा देश, श्रोताओं इस फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे लता जी की आवाज में। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता जी को, और श्रोताओं कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म में रफी साहब के गाए इस गीत से।

मेरे हमदम मेरे दोस्त श्रोताओं, इस फिल्म में रफी साहब के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। मैं छाया पाठक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से। हमारे फोन नंबर है 2660902। हमें आपके फोन कॉल्स का हमेशा इंतजार रहता है। बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
2: हेलो।
1: हेलो।
2: हाँ जी,
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: जी हाँ, मैं रजनी बोल रही हूँ भिंड जिले से।
1: बताएं वहाँ पर क्या हाल चाल है भिंड के?
2: बढ़िया है।
1: आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, क्या सुनना चाहेंगी?
2: आप एक काम करिए, मुझे पिंजरे गीत सुना दीजिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
1: अच्छा, ये वाला गीत सुनना चाहेंगी ताकि थोड़ी सी ठंडक आपके
2: में गाना की याद भी आ जाए।
1: जी चलिए,
2: मतलब हमेशा का सदाबहार गीत है।
1: सदाबहार गीत है, हाँ सही बात आपने कही। चलिए,
2: तो मिल जाएगा कि फिल्म का नाम बताना पड़ेगा?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सदाबहार गीत आपने पसंद किया है।
3: ठंडे ठंडे पानी से

0: हेलो
1: हेलो मैडम, सीपरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार,
1: जी मैडम।
0: क्या करते हैं वहां पर? खेती किसानी?
1: जी मैडम, खेती करते हैं और आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, रेडियो भी सुन लेते हैं। जी बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं आपके।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: ये बात आपकी की तुम्हारे कौन करेगी सुने।
0: तो
1: और
0: आप फोन अक्सर लगाते रहते हैं क्या?
1: जी मैडम, 15-20 दिन में लगाते ही रहते हैं।
0: जी
1: और मैडम बढ़िया, आप
0: जी सब बढ़िया है। हम
1: सावन भादो फिल्म का सुनवा दीजिए मेरे नैना, सावन भादो।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं छोटू चक्रधारी बोल रहा हूँ, करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। यहाँ
0: बिलासपुर में क्या करते हैं आप?
1: हमारा सिलाई से जुड़ा काम है, इसी में लगे रहते हैं। सिलाई
0: काहे से जुड़ा काम है?
1: सिलाई
0: सिलाई से जुड़ा काम है। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है?
1: क्या
0: जी
1: है, घर में ना अंदर में टावर नहीं आता, इसलिए होगा।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: आज
0: हाँ,

0: हमको सुना दो, तलाश फिल्म का गाना,
1: कौन सा?
0: नई वाला तलाश, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी गाने
1: गाना, गाने के बोल तो बताएं।
0: बोल है, जिंदगी के सफर में ऐसे तक खुद जाना है, पाना है क्या और खोना है क्या, जिंदगी के जुम्मे में पाना है क्या और खोना है क्या, ऐसे तक था जाना।
1: पाना है क्या, खोना है क्या। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका। हाँ
1: जी, मैम हम ग्राम पर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता पटेल छतरपुर से,
1: जी
0: क्या हाल है छतरपुर के?
1: अच्छे हैं मैम, कभी बादल होते हैं कभी धूप निकलती है। जी
0: तो आप छतरपुर में ही रहती हैं या आसपास किसी गांव में?
1: नहीं, छतरपुर के पास में महाराजपुर है, उसके पास में है पुर,
0: महाराजपुर के पास है पुर,
1: जी ग्रामपुर।
0: ग्रामपुर।
1: जी
0: तो
1: मैम
0: कुछ बताएं अपने गांव के बारे में, कितना बड़ा गांव है।
1: जी मैम, हमारा गांव वैसे तो गांव ही है हिसाब से, ठीक है, 3-4 हजार की आबादी है जी,
0: अच्छा,
1: और खेती किसानी होती है यहाँ पर। जी
0: बताएं क्या सुनाएंगी आज।
1: मैम, फिल्म का नाम तो याद नहीं मैम, और गाना के बोल है कि सॉरी दीदी अब ना करेंगे हम तो।
0: हम्म,

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं राजेश अग्रवाल, राजाराम नगर, देवास से। जी
0: देवास से बोल रहे हैं
1: जी
0: राजेश अग्रवाल जी। पसंद बताएं क्या सुनेंगे।
1: ये आराधना पिक्चर का गीत है, रूप रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, किशोर दा की आवाज में है।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी जी।
0: नमस्ते।
1: देवीदास कुशवाहा उल्ला ग्राम पोस्ट गमवाड़ी चला जिला टी गमवाड़ी से।
0: कुशवाहा जी और बताएं अपने बारे में, आपके क्या हाल है?
1: आपसे बात हुई पहली बार, कार्यक्रम आपका सुनता हूं मैं कंटिन्यू।
0: कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार?
1: मध्य प्रदेश का कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुनता हूँ, सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अपने मन पसंद ही अपनी तरह को।
0: साफ सुनाई देता है आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश?
1: हाँ।
0: अच्छा तो चले आज हम क्या सुनवा दें आपको?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सी?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सा?
1: मुस्कान का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं महाशी गर्ल सिनेमा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: कौन?
1: मैं महाशी गर्ल सिनेमा जिला महोबा से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: अभी 6th क्लास में है। हाँ
0: कौन सी क्लास? 5th क्लास में?
1: नहीं,
0: अच्छा, बहुत छोटे हैं आप तो। फोन आपने लगाया है कि किसी और ने?
1: मेरे बाबा ने लगाया है।
0: बाबा ने लगाया? बाबा यानी दादा?
1: हाँ पापा।
0: पापा ने लगाया है। तो आपकी स्कूल की छुट्टियां लग गई?
1: हाँ लगते
0: तो रेडियो सुनते हैं आप?
1: हैं। हाँ सुन लेते हैं कभी कभी।
0: सुन लेते हैं कभी कभी। चलें तो बताएं आज क्या सुनेंगे आप?
1: वो हम साथ साथ पिक्चर का,
0: कौन सा गाना?
1: छोटे भाई के बड़े भाई।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैडम, पिंडरी
0: नमस्ते।
1: जिला मंडल से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: सुमत कुमार जैन
1: जी, पिंडरी जिला मंडला जी।
0: जी, क्या करते हैं मंडला में आप?
1: मैं रिटायर्ड टीचर हूँ मैडम।
0: अच्छा, रिटायर टीचर हैं। अच्छा, कहाँ आप मंडला से ही रिटायर हुए? अच्छा,
1: नहीं, पिंडरी मेरा कस्बा है, छोटी बस्ती है पिंडरी,
0: वहाँ से हुए।
1: व्रती नगरी है पिंडरी, एमकॉम आती, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ मैडम।
0: तो आजकल क्या दिनचर्या है आपकी?
1: दिनचर्या बस यही है कि घर नौकर बन गया हूँ घर का।
0: नौकर
1: सब्जी
0: बन
1: सब्जी
0: गए
1: लाना
0: जी।
1: और घर के घरेलू कार्य को करना। तो तनख्वाह तो घर में कोई देता नहीं है, सरकार की तनख्वाह मिलती थी। श्रीमती कहती है कि मैंने एक दिन बोला कि नौकर बना लिए यार तुम लोगों ने, तो कहती अब घर का काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मैंने कहा भाई तुम तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो।
0: और पत्नी इतने सालों से जो कर रही थी घर का काम, तो आप दे रहे थे क्या उनको तनख्वाह?
1: तो अरे वेतन लाके सीधा उन्हीं के हाथ में देता था
0: तो
1: मैडम। अरे
0: वेतन कौन सा, वो अपने पे खर्चा कर रही थी है ना, परिवार चला रही थी। ऐसे ही आप भी जो कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं उनका। आप घर का काम मिलजुल कर होता है, अच्छी बात है ना कि आप शासन से रिटायर हो गए। वो तो कभी भी रिटायर नहीं होंगी घर के कामों से, तो आपको
1: वो
0: तो
1: तो गृह
0: सहयोग
1: मंत्री
0: करना
1: है
0: चाहिए,
1: मैडम,
0: आपको समय मिला है,
1: वो तो गृह मंत्री है, जो कहेंगे तो वो करना पड़ेगा।
0: करिए सहयोग। ऐसे ही मिलजुल कर काम करने से ही तो परिवार चलता है और प्रेम
1: जी
0: बना रहता है, अपनत्व बना रहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: रोटी फिल्म का सुना दीजिए, ये पब्लिक है सब जानती है जी। और मैं अपने छोटे कर्म चाह अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम, कि कमला प्रसाद शर्मा सर्रई वाली है, कृपाल पटेल है, मोहम्मद मोहराली है, ये लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं लेकिन फोन नहीं लगता।
0: चलिए
1: राधे श्याम केवट है, परेशान है
0: ठीक है, सुनिए
1: जी।
0: सब
1: हेलो
0: लोग ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी। चंद्रमान नामदेव बोल रहा है, ग्राम पोस्ट देरी जिला छतरापुर से। फोन करेंगी, सुना है कि
0: फोन करेगी,
1: धनवान
0: सुने कार्यक्रम है। धनवान
1: फिल्म का सॉन्ग सुना दीजिए, ते
0: का कौन सा?
1: आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
0: चलिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्ते मैडम।

0: हेलो
1: मैं सर मैडम चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: इंद्रभान सिंह
1: जी। आपका कार्यक्रम में जुड़ा मैडम, ये लाइव वाला कार्यक्रम है कि रिकॉर्डिंग वाला है? जी
0: ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है।
1: मैडम, अपने पसंद के गीत भी बताता हूँ। फिल्म का नाम है शहनाज सरदार और गीत के बोल भी है शहनाज सरदार, टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग जी हाँ।

0: फोन करें, गीत सुने।
1: ये सर सारी सारी रात तेरी याद सदाए, हजी बस शुक्रिया फिल्म है सर 1958 की,
0: आप अपना नाम तो बताएं पहले।
1: मैं गोविंद जलोदिया खाते गाँव।
0: खाते गांव से
1: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं छाया पाठक।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तेरी चक्करी बात हो रही है मेरी,
0: सारी सारी रात।
1: तेरी
0: क्या
1: याद सदाए।
0: फिल्म का नाम, इसकी फिल्म का नाम बताएं आप।
1: भैया बंद कर दे जरा। हाँ बोलिए।
0: हाँ, फिल्म का नाम क्या है इसका?
1: हाँ ये है मतलब आजी बस शुक्रिया,
0: अजीबत शुक्रिया, ये फिल्म का नाम है।
1: हाँ 1958 में पिक्चर आई।
0: चलिए
1: आप
0: सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैडम, लाल सिंह ठाकुर सुहागपुर एमपी से बोल रहे हैं
0: सुहागपुर एमपी से।
1: जी। चाय
0: अच्छा, क्या करते हैं वहाँ?
1: की दुकान है मैडम जी जी
0: अच्छा, तो अभी आप दुकान पर बैठे हैं?
1: दुकान पर है जी।
0: अच्छा, आपकी पसंद बताएं आज क्या सुनेंगे?
1: जो है नगीना फिल्म का गाना सुन रहा मैडम जी।
0: कौन सा?
1: मैं तेरी दुश्मन दुश्मन मेरा जी। बहुत
0: अच्छा, तो
1: दिन से लगाने की कोशिश में मैडम जी, बस 1 साल के बाद में आज लगा फोन
0: एक साल के बाद?
1: जी।
0: नहीं, मेरी तो आपसे बात हुई है इससे पहले। अच्छा,
1: नहीं नहीं हो पाई मैडम जी, नहीं है, आज पहली बार बात हो रही, वो भी काम वालों कैसे धोखे से लग गया। हम तो ट्राई कर रहे थे दुकान
0: धोखे से लग गया।
1: जी, हाँ मतलब लगा रहे थे तो लग गया, वैसा कहने का मतलब जी
0: चलिए, तो आप अपने
1: जी
0: ग्राहक की छोड़ के फोन लगा रहे थे, अपने ग्राहक की छोड़कर फोन लगा रहे थे, ग्राहकों की सेवा छोड़ करके।
1: जी। नहीं
0: तो और कोई भी आपकी दुकान पे काम करता है साथ में?
1: दुकान पे तो हम अकेले ही हैं मैडम
0: तो वहीं पर रेडियो भी सुनते हैं?
1: जी। रेडियो तो मैं बहुत दिन से सुनते हैं मैडम जी, कम से कम आज मेरे को होगा तो 20-25 साल होगा जब से सुन रहे हैं रेडियो जी।
0: चलें, सुने आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: अभी सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। ये प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशकों और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में 18 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम होंगे। इनमें 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनमें भोपाल में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन आम सभा संबंधी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को देना आवश्यक होगा। भोपाल में सिटी बसों के लिए 26 नए रूट तय किए गए हैं। सबसे लंबा रूट 68.5 किलोमीटर का सीहोर से रातापानी का तय किया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर फिल्म का एक गीत। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाराज, राकेश अग्रवाल। सुपर मार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। रूपा खेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। गंगोड़ी जिला उज्जैन से लिखने वाले हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ मालगाम और लोकेंद्र वर्मा। इसी गाने को पसंद किया है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बब्बू वर्मा, कालू वर्मा और उनके कालू भैया और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। और ये ख़त आया है, कहाँ से आया है इसमें इन्होंने लिखा, सिंहपुर बाड़ा से लिखा है राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने ये गाना सुनना चाहा है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शांति नगर उज्जैन से लिखने वाले हैं असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस पलक, अफशां और आयान दुलावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को सुनना चाहे, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज में। गाने को पसंद करने वाले हैं नाज मंजिल मेहोल सीतामढ़ी बिहार से। लिखने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम अरहान बाबू हमजा बाबू मुजम्मिल बाबू हुमेरा सुमेरा अबीहा शाहीन नाज नूरी नाज बच्चू शेख और चीना शेख। इसी गाने को पसंद किया है कोकिलवारा से ओराई ज़िला मुजफ्फरनगर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फैसल शेख नुसरत जहां नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शाहनवाज परवेज मसरत जहां नाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विद्यानगर तेंदुखेड़ा ज़िला दमोह से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश नेमा किरण नेमा आकाश नेमा विकास नंदिनी शिवाश और समस्त नेमा परिवार। सुनते हैं ये गाना, आवाज़ किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है परिचय। गुलजार ने इस गाने को लिखा है और राहुल बर्मन का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आरजू से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गाने को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, पटेल नगर मलोड पंजाब से लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से लिखने वाले हैं शैलेश गायकवाड़, वैशाली श्वेता सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नमक हलाल से, आवाज़ आशा भोसले की है, अंजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशी राजेश, शीतल राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राव, उषा राव, अमित कुमार राव, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते

अगले गाना लिया है हमने फिल्म जानवर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जबूरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के सदस्य। अगला गाना इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छोटी बलिया करजन मुंबई से लिखने वाले हैं अहमद भाई फूल वाले, इकबाल भाई फूल वाले, नूरेशा बेगम फूल वाले और कॉपस हैदा नई दिल्ली से लिखने वाले हैं नसरीन आज़ाद, आमना असमा परी और इमरान अहमद और दूसरे साथी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, गांधी बाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर, सरोज चौक अमरावती से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा बेगम, हादिया खान, असमा सालिया और शोएब खान। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जावाज से, आवाज़ें हैं मनहर उदास और साधना सरगम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, पटेल नगर मलोट से लिखने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया, और ये पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से लिखने वाले मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गुड़, मोहम्मद शादाब खत्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। ये खत आया है, इसमें लिखाई थोड़ी साफ नहीं है, जितने नाम मुझे समझ में आ रहे हैं, अनिल, नेहा, सीमा, सबीहा, फजल, सुषमा और बाकी के नाम मुझे इसमें समझ में पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो ये पत्र आया है गुमाश्ता नगर स्कीम 71 से। तो आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी आप खत लिखें तो थोड़ा संभल कर शब्दों को थोड़ा ऐसा लिखें कि हमें पढ़ने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को है और ये समय है कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी सुनने के। तो लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को

0: अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 13वीं यानी अंतिम कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आत्मा राम का नाट्य रूपांतरण। वैदिक ग्राम में महादेव सुनार एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वो अपनी अंगीठी के सामने बैठा खटखट किया करता। आस पड़ोस के लोग इस आवाज के अभ्यस्त हो चुके थे। महादेव के परिवार में पुत्र, बहुएं, पौत्र सभी लोग थे, परंतु उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। ऐसा उसके व्यावसायिक जीवन के बारे में भी कहा जा सकता है। वो भी तनावग्रस्त ही था। काम तो सबसे खरा करता था, फिर भी आए दिन लोगों की खरी खोटी सुनता था। ले देकर उसका अगर कोई था तो वो था एक तोता। उससे वो बड़ा ही प्रेम करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वो उसका पिंजरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता था।
1: अजी उठो जी, भोर हो गई है। अरे उठो, महादेव सुनार का तालाब की ओर जाने का समय हो गया है।
2: अरे भगवान, अंधेरे में इसका जर्जर शरीर और पोपले मुंह को क्यों दिखाना चाहती है? ऐसा लगता है पिशाच राज के दर्शन हो गए। सारा दिन खटपट और सुबह को ये सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता।
1: इतना बेईमान है ना, हर गहने में अपना टांका रखता है।
3: पता नहीं अब किस मोहमाया में अटका है।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा।
5: माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
1: मार कर टांगे तोड़ दूंगी, चल हट। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
5: माँ बहुत भूख लगी है, दूध ही दे दो।
1: ठहर जा, मेरे दो हाथ हैं, हाथ पाँव मत फुला मेरे, चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर।
2: अरे सुनती हो, मेरा गमछा कहाँ है?
1: तुम्हें कोई चीज मिली है आज तक? जॉब मिलेगी, वही सूख रहा है रस्सी पर।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, ओ बहू, अरे चाय बन गई क्या?
6: बाऊजी अभी देर लगेगी।
1: अब बच्चों को कुछ खाने को दूं या इनकी चाय बनाऊं? इन्हें भी सुबह से खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं सोचता।
4: चलो ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत हो तो दुकान पर ही कुछ खाने को भेज देना।
7: महादेव जी, परसों अपनी औरत के कान का बुंदा ठीक होने के लिए दिया था, हो गया क्या?
4: हाँ हाँ हो गया भाई, यही तो रखा था। ये लो।
7: वजन तो बराबर है ना?
4: अरे बिल्कुल बराबर है। लो सामने है, देख लो, तुम्हारी ही आंखों में फेर है।
7: मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो तुम्हारे पास आया। लो अपने पैसे।
4: सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दत्ता। अरे बहू, अरे बहू, चाय नहीं बनी अभी तक? कैसी बहुएं हैं, सुबह के समय ससुर को एक प्याला चाय भी नसीब नहीं है। अरे गलती इनकी नहीं है, अरे मेरे बेटे ही इनके गुलाम हैं, उन्होंने ही इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। ये हालत तो जब है जब मैं ही कमा कर देता हूं। निकम्मी औलाद, कुछ कमाते थमाते हैं नहीं, और रात को दो छटाक पीकर चैन भी नसीब नहीं होने देते। सारा दिन मेरे सिर पर नाचती है, उन्हें अलग संभालो।
2: हाँ जी बाबू, महादेव जी मेरी अंगूठी तैयार हो गई।
4: भाई तुम्हारी पुरानी अंगूठी को गला कर तुम्हारे हिसाब से तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। ये लो, देखो।
2: ये क्या किया, इससे तो मेरी पुरानी अंगूठी अच्छी थी।
4: तो अच्छी बात है, इसे गला कर तुम्हारी पहले जैसी बना दूंगा, कल ले जाना।
2: हाँ हाँ समझे, लो पकड़ो अपने पैसे, बड़ा आया ठग कहीं का।
4: अरे बहू, दोपहर होने को आई, अरे कुछ खाने को मिलेगा।

0: ने साथ लेकर जाऊंगा। लानत है ऐसे भोजन पर, मेरी गैरत मुझे धिक्कार रही है। नहीं करना मुझे भोजन। लो बेटा मिट्टू, मेरे प्यारे तोते, तुम तो हरी हरी मिर्च खाओ। पानी, हाँ लो पानी भी डाल देता हूँ, लो पी लो।
1: महादेव जी, इतनी रात गए यहाँ घर के बाहर बैठे हैं? ठंड बहुत है, अंदर चले जाओ।
0: अरे घर की कलेशों से तो मैं और मेरा मिट्ठू बाहर ही भले। सतगुरु दत्त शिव दत्ता, सतगुरु दत्त शिव दत्ता, राम राम राम राम राम, जय सिया राम जय सिया राम, सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा। चलो भाई मिट्ठू को उठाता हूँ। अरे भाई मिट्ठू, भोर हो गई। मिट्ठू मिट्ठू, अरे पिंजरा खुला है, मिट्ठू कहाँ उड़ गया? मिट्ठू मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू बेटा, कहाँ चला गया मिट्ठू? क्या करूं, किससे पूछूं? यहां तो कोई दिखता भी नहीं है। हे भगवान, ये किसकी बदमाशी है? मेरा मिट्ठू, अरे अरे बहू बहू, अरे मोहन चुन्नू। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ना जाने कहां छुप गया, ना जाने कहां छुप गया। सतगुरु सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, शिव दत्त दाता, अरे वो रहा, हाँ वो रहा। अरे अब तो आ जा मेरे मिट्ठू, आ जा आ जा आ जा बेटा, आ जा। अरे कहाँ जाके बैठा है? अरे पेड़ पर मत बैठ, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा पिंजरे में, आ जा आ जा आ जा आ जा। अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा इसे। अरे अरे ये तो फिर उड़ गया। सतगुरु दत्त शिव दत्त दादा।
2: अरे देखो तो महादेव को, इस बुढ़ापे में तोते से कितना मोह लगाए बैठा है। अरे तोता है, उड़ गया तो उड़ गया।
3: अरे बुढ़ऊ, ये तोता नहीं उसकी आत्मा है। अरे जन्म मरण का साथी है, देखते नहीं उसकी क्या हालत है?
4: जन्म मरण का साथी, देखते नहीं उसकी क्या हालत है? घर में इतने नाती पोते, बेटे बहुएं होते हुए भी ना समय पर खाना है ना चैन की।
5: खेतों से फुर्सत मिल गई जो महादेव का किस्सा लेकर बैठे हो। भागो यहाँ से, क्या चिल्लपो मचा रखी है।
0: सुबह से दोपहर हो गई लेकिन ये मिट्ठू पकड़ में नहीं आया। अरे मेरे बेटे, अरे मेरे मिट्ठू, अब तो आ जा। ओ शिव दत्त, आ जा। क्यों भैया, ये आम के पेड़ की फुनगी पर बैठे क्या बतिया रहे हो? आ जा आ जा मेरे भाई, पिंजरा खाली है। अरे अरे उड़ क्यों रहा है? अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, मुझे नहीं पहचानते क्या? अच्छा लो, मैं एक काम करता हूं, मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं। मैं पेड़ की ओट में आ जाता हूं, तुम चुपके से पिंजड़े में आ जाना। लो मैं पेड़ की ओट में आ गया। ओ शिव दत्त दाता, सुबह से ये समय आ गया। अरे ना खाने का, ना पीने का, ना पीने का, तलवों से आग निकल रही है और सिर में चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता।
6: मैंने पकड़ लिया,

0: मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़। ये तो फिर उड़ गया, उड़ गया।
1: शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता तो कभी पिंजरे के द्वार पर आ बैठता, अपनी दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वो जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। तोता ही वो प्राणी था जो महादेव को चेतन रखता था। उसका हाथ से निकलना मानो जीवन ही लुप्त हो गया हो। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा बीच बीच में झपकियां ले लेता था और क्षण भर में चौंक कर आंखें खोल देता, और इस गहन अंधकार में महादेव की ध्वनि सुनाई देती, सत गुरुदत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजरी कि अचानक एक आहट हुई। देखा दूर वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा है। देखा कई आदमी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक ने उसे उत्तेजित कर दिया और वो ऊंची ध्वनि में बोला, सदगुरु दाता शिव दत्त दाता। उसकी आवाज ने इस गहन सन्नाटे में बंदूक की गोली जैसी आहट का काम किया। सारे चिलमबाज भाग खड़े हुए।
0: ये कौन है, इतनी रात गए? अब ठहरो, ठहरो। अरे लगता है ये सब चोर हैं। अरे चोर, अरे चोर, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। ये दीपक जल रहा है यहीं पर तो ये। अरे ये कलसा कैसा रखा है? अरे अरे ये तो अशर्फियां है, अशर्फियां। क्या करूं, एक काम करता हूं, पहले ये दीपक बुझा दो, कलसा उठाता हूं। बहुत भारी है। अब इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूं। कहीं चोर वापस आ गए और मुझसे मोहरे छीन ली तो। नहीं नहीं नहीं नहीं, क्या करूं मैं। हाँ ऐसा करता हूं, गड्ढा खोद कर इन मोहरों को यहां दबा देता हूं। हाँ, और कुछ कुछ अपने साथ कमर में बांध लेता हूं। इन मोहरों से अब पक्का मकान बनवाऊंगा, सर्राफे की एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा, सब रिश्तेदार मेरे तलवे चाटेंगे। नहीं नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, ब्रह्म भोज करवाऊंगा, शिवालय और कुआं भी बनवाऊंगा। अरे परलोक तो सुधार लूं कम से कम, रोज कथा सुनूंगा और किसी भी साधु संत को अपने दर से भूखा नहीं जाने दूंगा। लेकिन लेकिन कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा कैसे?

0: कैसी कल्पना कर रहा था मैं। अरे ओहापू में सुबह हो गई। अरे मिट्ठू कहाँ है? सतगुरु शिव दत्ताता, सतगुरु शिव दत्ताता, राम के चरण में चित्त लागा, राम के चरण में चित्त लागा। अरे अरे मिट्ठू, अरे मेरे तोते, आओ आओ आओ आत्मा राम। तुमने कष्ट तो बहुत दिया, राम के चरण में चित्त लागा। मिट्ठू मिट्ठू, हमारे दिन बदल गए बेटा, अब तेरा पिंजरा सोने का बनवाऊंगा। सोने का बनवाऊंगा तेरा पिंजरा। चलो घर चलते हैं। इस कलसे को नांद में छिपाकर कोयले से ढक देता हूं और कोठरी में रख देता हूं। हाँ, सुबह सबसे पहले अब मैं पुरोहित से मिलूंगा। हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी,
2: कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। अरे जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता।
0: अरे पाए लागन पंडित जी।
2: अरे ये मंगल मूर्ति कहाँ से यहाँ पहुँची? क्या है जी, क्या बात है, क्या कहते हो? अरे जानते नहीं है, सब आए हम पूजा कर रहे हैं। है?
0: महाराज, आज मेरे घर पर सत्यनारायण की कथा है।
2: महादेव, महादेव के द्वार कथा है? ये तो बढ़िया साधारण घटना है। अरे ये तो उतनी ही विश्वसनीय है जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। हाँ, आज क्या है
0: जी? कुछ नहीं पुरोहित जी, बस यूं ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, महादेव सुनार के घर आज सत्यनारायण भगवान की कथा है। सभी आमंत्रित हैं, कथा के बाद भोजन की भी व्यवस्था है। सुनो सुनो सुनो गांव वालों, सुनो,
4: अरे महादेव के घर सत्यनारायण की कथा और ऊपर से भोज।
5: अरे पूरे गांव को बुलाया है
6: भाई, आज रेत में दूब कैसे उगी?
5: ये तो वही बात हो गई कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल रहा है।
0: भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी है, कितने खरे का खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा पूंजी मैंने मार ली हो, जिसके खरे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब भी जी चाहे आप आए और अपना हिस्सा चुकता कर ले, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
7: हम कहते नहीं थे
8: भैया? क्या खाकर मरेगा, कहां से चुकता करेगा, हजारों का जोड़ बन जाएगा।
9: अरे महादेव जी, जो जीते हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो परलोक सिधार गए उनकी वसूली कौन करेगा?
0: अरे उनके घर वाले तो होंगे ना।
5: अरे भाई, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, बीत गई सो बात गई, अब किसे याद है क्या क्या वसूलना।
8: अरे भैया, सत्यनारायण की पूजा अर्चना और भोग चल रहा है, यही क्या कम है?
10: महादेव, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनवाने के लिए तुम्हें सोना दिया था?
0: हाँ।
10: और तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे, याद है या नहीं?
0: हाँ हाँ पुरोहित जी, अच्छी तरह से याद है।

0: आपका कितना नुकसान हुआ होगा?
1: यही कोई 50 रुपए।
0: तो ये लीजिए 2 मोहरे।
2: ये तो सरासर बेईमानी हुई। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा।
1: बेचारे से पैसे ऐंठ लिए,
2: पूरे ठग हैं ठग। हाँ जी, नाम के ही पंडित जी हैं, नारायण का भी डर नहीं, नियत ऐसी खराब। राम राम राम राम राम।
0: मालूम होता है आप सभी लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके बाद तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें।
3: देव जी ने यार उद्धार करें। अच्छा, ये सोचने वाली बात।

0: एक माह बीत गया। लेनदारी के नाम पर महादेव से मिलने कोई नहीं आया। महादेव को चोरों के भय से रात को नींद नहीं आती थी। अब वो कोई काम नहीं करता था। रहा सहा नशे का चस्का भी जाता रहा। उसके द्वार पर जो भी साधु भोगी आते, उनके सत्कार में महादेव का दिन गुजरने लगा। दूर दूर तक आसपास के गांवों में महादेव की कीर्ति फैलने लगी। एक माह बीत गया। एक भी आदमी इस एक काम में हिसाब करने या लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। आप वेदी ग्राम जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। तालाब की मछलियां कोई नहीं पकड़ता। समीप ही किनारे पर एक विशाल समाधि है। समाधि पर आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता वो रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे से आवाज आती है।
1: सतगुरु दत्त शिव दत्ताता, सतगुरु दत्त शिव दत्ताता, सतगुरु दत्त।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं यानी अंतिम कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, अशोक शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 13वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें

0: आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबर।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम में उन्होंने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश के 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,00,000 रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। 3 मई को ही नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है। अब पुनः परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, ना ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। प्रदेश भर में गर्मी का कहर जारी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, एक बज चुके हैं। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। सखियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। इस समय मैं धम्ममित्रा आपके साथ हूँ। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, शुरू हो चुकी हैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ। बच्चों की ही क्यों, हमारी भी। रोज रोज का एक सा रूटीन, सुबह सुबह टिफिन बनाना, बॉटल, स्कूल ड्रेस की तैयारी से कुछ दिन की राहत। मुझे लगता है यही बेस्ट टाइम है वो काम करने का जिन्हें आप काफी समय से प्लान कर रही थी और हो नहीं पा रहे थे। ये जो कुछ समय मिला है बच्चों के साथ साथ आपको भी, उसे आप बेहतर यूज करें और बनाएं यादगार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सखियों, टूर प्लान करें, कैंपिंग करें पूरी प्लानिंग के साथ। दूरबीन साथ लेकर जाएं, प्रकृति के बीच पेड़ पौधे, तरह तरह के पक्षियों को देखें, उनकी आवाज को सुनें, पहचानें, महसूस करें। पेड़ पौधों को पहचान कर बच्चों को बताएं। सखियों, प्रकृति के साथ बिताए पल हमें प्रकृति से जोड़े रखते हैं। इस दौरान बस ये याद रखें कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, ना पेड़ पौधों को तोड़ें, ना ही उन पर कुछ लिखें। सखियों, कहीं दूर नहीं जाना है तो एक शॉर्ट रोड ट्रिप ही प्लान करें। सब साथ में हो, स्नैक्स हो, म्यूजिक हो और बाहर सुंदर नजारे। सखियों, ये आपस में जुड़ाव का एक बेहतर तरीका है। पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं, दोस्तों को भी शामिल करें उसमें। सच मानिए, जितने लोग उतना मजा। सखियों, बच्चों को प्लानिंग के साथ साथ तैयारी में भी शामिल करें। ऐसा करने से उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी जागता है। सखियों, जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं, खुशी तो उसी में मिलती है। इसलिए कुछ क्रिएटिव करें, वो भी अपने मन का। सखियों, कुछ भी कह लो पर बच्चों को छुट्टी का असली मजा तो दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ बिताए पलों में ही मिलता है। उनका प्यार दुलार, दादी नानी के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन, उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, किस्से कहानियां हमारे जीवन में अपार खुशियां भर देते हैं। सच कहूं तो ये पल दुर्लभ और अनमोल होते हैं। क्यों ना इन छुट्टियों में इन पलों को संजो लें और यादगार बना लें।

0: सखियों, महिला सुरक्षा आज के समय में बहुत संवेदनशील विषय है। अपने रोजमर्रा के जीवन में सभी महिलाएं सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं। इसी संदर्भ में हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियां और सावधानियां। इस भेंटवार्ता में एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: और प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में, जहां आज हमारा विषय है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा समाज की प्रगति का मूल आधार है, क्योंकि सुरक्षित नारी ही परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईपीएस विदिता जी, जो ग्वालियर जिले में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं। उनके बेटी के पेटी जैसे अनूठे प्रयोगों से प्रेरित होकर ये साक्षात्कार ग्वालियर जिले में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों, रणनीतियों और जागरूकता पर केंद्रित है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला सवाल, हमारा जो शहर है ग्वालियर, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं और इसको लेकर आपके विभाग की क्या रणनीतियाँ हैं?
2: देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, बट यदि हम आज की इस युग की बात करें, जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, जहां पर सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन साथ ही विडंबना ये भी है कि शायद जो काम की चीजें हैं वो जनता तक, महिलाओं तक खासकर नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे युग में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अवेयरनेस की है। अवेयरनेस इन रिलेशन टू व्हाट लॉज आर देयर रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, कैसे महिलाएं किसी भी स्थिति में किस व्यक्ति को कांटेक्ट करें, किस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें, और यदि वो नहीं कर पा रही हैं तो अपने लेवल पर वो किसी भी सिचुएशन से कैसे डील कर सकती हैं। आई फील कि दैट इज द बिगेस्ट लैकुना जो आज के समय में किसी भी शहर में है। यदि हम मेट्रो सिटीज की भी बात करें, यदि हम टायर टू टायर थ्री सिटीज की भी बात करें, तो ये चैलेंज आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है। और यदि हम पुलिस विभाग के प्रयोगों की बात करें,

0: करें, हमारे कार्यक्रमों की बात करें, तो आई वुड लाइक टू टेल कि एक जो हमारी स्पेशल ब्रांच रहती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, उसमें फोकस जो हमारा रहता है, पुलिस विभाग का रहता है, वो इन्हीं चीज़ों पर रहता है कि हम कम्युनिटी के अलग अलग वर्गों के बीच में जाएं। साथ ही जो महिला सुरक्षा विंग है, उसका फोकस स्पेसिफिकली विमेन और जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जाने वाली बच्चियां हैं, उन पर रहता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग और जो हमारा क्राइम अगेंस्ट विमेन विंग है, वो दोनों बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, समय समय पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, मुस्कान अभियान चलाया जाता है, साथ ही मैं हूँ अभिमन्यु अभियान चलाया जाता है, साइबर स्पेस की सुरक्षा को लेकर, कैसे खुद को साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रखें उसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं। तो समय समय पर PHQ लेवल से भी अभियान चलाए जाते हैं, जिला स्तर पर हम लोग भी हमारे जिले की क्या समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग अभियान चलाते हैं। जैसा अभी आपने बताया, बेटी की बेटी भी हमारा एक ऐसा ही अभियान था, जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर महिलाओं बच्चियों का ज़्यादा आना जाना रहता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या फिर जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स का क्लस्टर है, वहाँ पर हम एक बेटी की पेटी लगाते हैं, जिसमें जो भी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ खासकर, वो अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकती हैं। क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक हिचक रहती है पुलिस तक जाने में, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा डर भी रहता है कि हमारी बात को कितना सीरियसली लिया जाएगा, क्या हमारी बात सुनी जाएगी, क्या हमें जज तो नहीं किया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों से डील करने के लिए हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसमें आप अपनी एनोनिमस शिकायतें भी डाल सकते हैं, और नियमित समय पर इन पेटियों को पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा ही खोला जाता है और उन पर फिर कार्यवाही की जाती है।
1: बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपके विभाग का। ये अवेयरनेस की बात आप अभी कर रहे थे, सोशल मीडिया एक टूल है, आज के समय में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए?
0: सबसे पहले तो वेन एवर वी गो टू स्कूल्स और कॉलेजेस, तो हम सभी को यही बताते हैं कि सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट एंड हाउ मच वी यूज इट। बहुत बारी, जैसे यदि हम पढ़ाई की ही बात करें, तो इतनी सारी कोचिंग्स ऑनलाइन है, इतने सारे ट्यूटर्स ऑनलाइन है, कि जो टायर 3 सिटी

0: से यदि हम पॉजिटिवली सोशल मीडिया को यूज करने लगें, थोड़ा सा हम केयरफुली अपना माइंड अप्लाई करते हुए यूज करें, तो इट कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर आर ओन डेवलपमेंट। साथ ही सोशल मीडिया का यूज पुलिस कैसे करती है, यदि इस बारे में हम बात करें, तो आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हों, कॉलेज वाले बच्चे हों, या फिर हाउसवाइफ्स हों, सबके पास मोबाइल है और सबकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सब यूट्यूब पर हैं, सब फेसबुक पर हैं, सब इंस्टाग्राम्स पर हैं। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा जो हमारे पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, समय समय पर हम उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज डालते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और रील्स के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, छोटी सी वीडियोस बनाकर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर की जाती है। जैसे अभी नए कानून आए हैं, आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है बीएनएस और बीएनएसएस के द्वारा, तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजंस आए हैं, महिलाओं के लिए ऐसी और क्या नई चीजें आई हैं, तो उन सबके बारे में भी छोटे छोटे फोटोज वीडियोज पोस्टर्स बना के इन पर डाले जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो यदि हम अपने इन छोटे से प्रयासों के माध्यम से थोड़े से जनता को भी यदि हम अवेयर कर पाए, तो आई थिंक इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, माइंडफुल यूज सोशल मीडिया का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। विदिता जी, अगला प्रश्न मैं करना चाहूंगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विषय में, जो सुरक्षा का संकट है वो वहाँ पर भी होता है इक्वली, इसको लेकर पंचायत स्तर पर कोई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्या?
0: ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं शासन की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से, वो शहरी क्षेत्र तक ही लिमिट हो जाते हैं। इस बारे में जो हमारा सोचना है वो ये है कि समस्याएं तो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी आती हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि अवेयरनेस इंफॉर्मेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो शहरी क्षेत्रों से बहुत कम है। तो ऐसे में हमारे द्वारा लगातार जन संवाद किया जाता है, जहां पर हमारे थाना प्रभारी, हमारी महिला पुलिस अधिकारी समय समय पर किसी ना किसी गाँव में जाती है, वहां पर जन संवाद का आयोजन करती है, जिसमें हम पंचायत के सदस्यों से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सभी आए, और उनसे ये जो निरंतर समय पर, निरंतर अंतराल पर जो ये संवाद रहते हैं, उसमें हम उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो अभी किसी ऐसी समस्या को फेस कर रही हैं, क्या ऐसे कोई गुंडे बदमाश हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं आसपास, क्या कोई अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिससे वो या उनके परिवार वाले पीड़ित हैं। साथ ही जो पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारी देते हैं, जो नए नए प्रावधान आते हैं ऐसे जन संवाद में, हम उनकी जानकारी भी उन्हें देते हैं। तो ये बिल्कुल पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण अंचल में जाके, जो भी हमारे गांव रहते हैं उनकी पंचायत में जाके हमारे द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसके जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिल्कुल आखिरी उस व्यक्ति तक, आखिरी उस महिला तक पहुंच सकें जिसको पुलिस स्टेशन के नाम सुनकर ही जिसे डर लगता है, जो शायद कभी आए भी नहीं होंगे, जिन्हें शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, और शायद वो कभी अपने जीवन काल में आएंगे भी नहीं पुलिस थाने, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो दूर दराज क्षेत्र में निवासरत है।
1: विदिता जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको पता है एक हेल्पलाइन नंबर है, सब उसको जानते हैं, लेकिन जब कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा महसूस होता है कि कोई इस तरह का संकट है, तो आप ये भूल ही जाते हैं कि कहीं आपने सेव किया है वो हेल्पलाइन नंबर और प्रेस करना है उसको। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में हमें हमारी युवतियों को या जो भी महिलाएं हैं समाज में, प्रशिक्षण और सेल्फ डिफेंस का कोई प्रोग्राम जो उनको सिखाया जाए तो वो चीजें शायद ज्यादा काम आएंगी। ऐसा कोई सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम या प्रशिक्षण की योजना है आपके विभाग में?
0: पुलिस विभाग का पीएचक्यू स्तर से एक सृजन कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम एनजीओज के साथ टाई अप करते हैं, और फिर ये एनजीओज अलग अलग क्षेत्र में जाकर ऐसी कम्युनिटीज को चुनते हैं जहां पर स्कूल नहीं भेजा जाता है बच्चों को, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर शासन के कार्यक्रमों के प्रति या फिर पुलिस के कार्यक्रमों के प्रति कोई भी अवेयरनेस नहीं है। अभी हाल ही में हमारे द्वारा माधोगंज क्षेत्र में एक एनजीओ के साथ मिलकर एक ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम ऐसे बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों की हम 15-20 दिन की क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम उनको आउटडोर क्लासेस भी लेते हैं, इंडोर क्लासेस भी लेते हैं। आउटडोर क्लासेस में उनको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, इंडोर क्लासेस में उनको थोड़ा बहुत जो भी हमारे नए लॉज हैं उनकी जानकारी दी जाती है, और अलग अलग विषयों पर भी उनकी क्लासेस ली जाती है।

0: जाती हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सभी जिलों में हो रहे हैं और निरंतर अंतराल पर हो रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटीज को चुनकर इसमें भागीदार बनाया जाता है।
1: अच्छा, लॉस तो विदिता जी पहले से बहुत ज्यादा है ही, हमारे पास एनफ है। इम्प्लीकेशन को लेके आपको भी लगता है सशक्त होना चाहिए हमारे सिस्टम को?
0: लॉज हमारे पास है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोंग फ्रेमवर्क है, बट आई फील कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बहुत बारी हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ जो घटना हुई है क्या वो अपराध है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जैसे स्टॉकिंग की यदि बात करें, तो यदि हम आज के बच्चों से पूछेंगे कि कितने कितनी लड़कियों को अवांछित मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, हम अपना इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, हमें भी हजारों में मैसेजेस मिलेंगे। वो भी डिजिटल स्टॉकिंग है। यदि कोई बार बार हमें मैसेज कर रहा है, हमारे मना करने के बाद भी मैसेज कर रहा है, वो भी स्टॉकिंग है और वो भी लॉ के परव्यू के अंडर आता है। तो आई फील कि अवेयरनेस सबसे जरूरी है। जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि उसके साथ जो घटना हुई है वो अपराध की कैटेगरी में है कि नहीं
1: बिल्कुल
0: है, तब तक वो पुलिस के पास नहीं आएगा, और जब तक पुलिस को उस चीज की जानकारी नहीं लगेगी, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। तो आई फील कि अवेयरनेस ही वो टूल है जिसके जरिए हम अपनी जनता को सबसे ज्यादा सशक्त बना सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, दोनों ही पक्ष आपको संदेश देना चाहती हैं इनको महिलाओं की सुरक्षा के विषय में?
0: जो भी श्रोता आज मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को यही बताना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि सपने देखने चाहिए हमें, और बहुत बड़े सपने देखने चाहिए। और केवल सपने देखने नहीं हैं, जितने बड़े सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी है। और ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं, ग्वालियर पुलिस आपको दिला रही है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए वो ग्वालियर पुलिस आपको देगी। पूरा प्रयासरत है ग्वालियर पुलिस कि आपको एक सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें आप मेहनत कर सकें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।
1: जी, जाहिर सी बात है आपके संदेश को सुनकर जो हमारे श्रोतागण हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, उनको आलंबन मिल रहा होगा। लेकिन सैड ट्रुथ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है और वो नियमों और कानूनों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते, तो मुझे लग रहा है कि ये अवसर उनको भी एक संदेश देने का है, अगर आप देना चाहें।
0: देखिए, मदद करना हमारा कर्तव्य है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति को, उस फरियादी को, उस आवेदिका को, आवेदक को हम संतुष्ट कर कर भेजें। उसके अलावा भी सुओ मोटो कई बारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आती हैं कि असामाजिक तत्व असामाजिकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं या ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में उनका भय बना हुआ है। आप लोग भी निश्चिंत रहिए, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पुलिस आप तक जरूर पहुंचेगी और आपके जो भी कर्म है उनकी जो भी लीगल सजा है वो आपको जरूर मिलेगी।
1: बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, और अब इसी के साथ हम साक्षात्कार को विराम देंगे। आपने इतने संवेदनशील विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सखियों, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता, महिला सुरक्षा चुनौतियाँ और सावधानियाँ। एएसपी ग्वालियर विदिता डागर से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। सखियों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे, आर के नारायण। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई है। नारायण जी ने अपने जीवन काल में 2000 से ज्यादा उपन्यास, कहानियां व नाटक लिखे। उनकी लेखन शैली ने भारतीय जीवन के सार को बड़ी ही सरलता और गहराई से छुआ था। उनका पहला उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक ने स्वामीनाथन नामक चरित्र का परिचय कराया, जो मालगुड़ी नामक काल्पनिक कस्बे का एक शरारती और सहज लड़का था। इस उपन्यास के सफलता के बाद उन्होंने कई अन्य रचनाएं लिखी, जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द गाइड और द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी शामिल है, जिस पर धारावाहिक भी बना था और लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। उनकी लेखन शैली जो सरलता और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ से परिपूर्ण थी, भारत और विदेश दोनों जगह पाठकों ने उन्हें खूब सराहा। मालगुड़ी डेज, लघु कथाओं का एक संग्रह जो मालगुड़ी में जीवन की सादगी और सुंदरता को दर्शाता है। इसमें प्रेम, विरह और मानवीय संबंधों को भी शामिल किया गया। आर के नारायण जी की प्रत्येक कहानी भारतीय संस्कृति और मानव स्वभाव के अनूठे पहलू को दर्शाती है। नारायण की असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों को चित्रित करने की क्षमता ने उनके लेखन को अत्यंत प्रासंगिक बनाया। नारायण जी का भारतीय साहित्य पर प्रभाव अतुलनीय है। उन्हें अंग्रेजी में आधुनिक भारतीय लेखन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनकी अंतिम रचना दादी की कहानी 1992 में 80 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई, जो कहानी कहने के प्रति उनके अटूट जुनून को दर्शाती है। अपने अंतिम वर्षों में भी नारायण जी भारतीय साहित्य में एक प्रिय व्यक्तित्व बने रहे। सखियों, आर के नारायण को साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1964 में पद्म भूषण, सन 2000 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले। नारायण को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा 1980 में A.C. बेसन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर के नारायण जी का निधन 13 मई 2001 को चेन्नई में हुआ। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

सखियों, गर्मियां आते ही हम आम, तरबूज, खरबूज को खूब मजे से खाते हैं, जो हमारे शरीर में पानी की कमी को तो दूर करते ही हैं, साथ ही ताजगी भी महसूस कराते हैं। पर सखियों, गर्मियों में एक और फल लाभकारी है, वो है बेल। सखियों, इसके गूदे से एक ताजगी भरा स्वादिष्ट पेय तैयार किया जाता है। सखियों, इसमें

फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम व विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण बेल का शरबत धमनियों के कार्य को बेहतर बनाता है और हृदय संबंधी कार्यों में सुधार करता है। सखियों, बेल का रस पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन पाचक टॉनिक है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं। इसका रस भूख को बढ़ाता है, थकान दूर करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। सखियों, हीट स्ट्रोक में भी ये बहुत फायदा करता है, इसलिए सखियों हो सके तो बेल का प्रयोग इन गर्मियों में जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें, ताजगी भरा महसूस करें। इसी के साथ अपनी सखी धम्ममित्रा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रमोद कुमार जोशी के गाए लोकगीत, पहले चौकड़िया फिर गारी, इसके साथ दादरा। तो सुनते हैं प्रमोद कुमार।

प्रमोद कुमार जोशी के गाए इस दादरा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है और जिसमें आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हीरा पन्ना फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आरडी बर्मन का संगीत।

0: लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर देश के उस अडिग संकल्प को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों बिना नई खरीद किए जहां संभव हो सके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की उनकी 7 अपीलों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के केजीपी 12 के चारों शावकों कल सुबह एक मांद के पास मृत और शतविशत हालत में मिले। महज एक महीने पहले 11 अप्रैल को जन्मे इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जिंदा देखा गया था। शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी दूसरे जंगली जानवर ने इन्हें मारा है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। वन विभाग ने बताया कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। कूनो के बाकी सभी चीतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी कई लोगों से पूछताछ की। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना करीब 6% उछलकर करीब 1,62,000 रूपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 6.4% की बढ़त के साथ करीब 2,96,000 रूपये प्रति किलो का कारोबार कर रही है। दरअसल सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में ये भारी उछाल आया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि निमाड़ समेत कई जिलों में शाम का मौसम पलटा और तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम का ये मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर उमंग ऐप पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। तो ये था हमारे समाचार इस बुलेटिन के, और अगला बुलेटिन सुनिए शाम को 7:10 पर। तब तक के लिए

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर

0: सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। पहली फरमाइश है पप्पी लहरी और आशा भोंसले की आवाज में गाया हुआ प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत की। गीत इंदिवर का और संगीत पप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिदक, जितेंद्र बिदक और मीका बिदक। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

घंटाघर चौक खंडवा से ये संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्नति पंचोलिया। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, आप सबने पसंद किया है। प्रेम गीत फिल्म का ये नगमा, आवाज़ जगजीत सिंह की, गीत इंदिवर का और संगीत जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजिए बनियापारा धमतरी से, छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बीवी स्वाति माखीजा, छुटकी शरद जुड़वानी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दंतरिंगी से भागवत वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राजेश, साथी राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है।

सताए कितनी छुपाए कह दे।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसार, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरे विश्व ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने ये साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में ये बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों, निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे के

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और रात 8:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आराधना कुमारी से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मृदा ताप और खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी तकनीक। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोक रंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग राकेश्री। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहे।

अगली आवाज़ सुनिए धुरंधर फिल्म से शाश्वत सचदेव शहजाद अली शुभदीप दास चौधरी की। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल और साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है शाश्वत सचदेव और रोशन ने।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए भूल भुलैया 3 फिल्म से पिटबुल, दिलजीत दोसांझ, नीरज श्रीधर की आवाज़ में ये गीत। लिखा है ध्रुव योगी, समीर पिटबुल और संगीत में पिरोया है इसे तनिष्क बागची और प्रीतम ने।
1: Let's set the world on fire. Hey, hey,

सत्यमेव जयते टू फिल्म से अगला गीत सुनिए, ज़ारा एस खान देवनेगी की आवाज़ है, तनिष्क बागची और रश्मि विराग ने लिखे हैं बोल और संगीत है तनिष्क बागची का।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, ए दिल है मुश्किल फिल्म से अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ें हैं। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब समय है जनहित में जारी सूचना का। भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सूचना समाप्त हुई।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना मंजूर की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के उच्च मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवनी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,835 करोड़ से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। प्रदेश में शासकीय कार्य प्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपर्क अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 मई को वृत्त ग्वालियर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स हैं। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said, for the kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
2: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: Mr. Vaishnav added that the MSP amount paid to 14 kharif crop growing farmers during the period 2014-15 to 2025-26 was 18.99 lakh crore rupees against the payment of 4.75 lakh crore rupees during the period 2004-5 to 2013-14. The Union Cabinet has approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme will generate revenue of 6,300 crore rupees per year only from mining and will also support Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative amid current geopolitical situation. Air India has decided to reduce international flights, temporarily suspending services on some overseas routes. The decision has been taken in the wake of airspace curbs and high jet fuel prices. Air India said rationalization of international services will be in place for June to August this year. Air India to temporarily suspend services to on Delhi-Chicago, Mumbai-New York, Delhi-Shanghai and Chennai-Singapore and two other routes. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Dr. Sarma took oath as the Assam Chief Minister for his second consecutive term yesterday. The government of West Bengal has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, animal products and other essential products. Earlier restrictions were placed by the erstwhile TMC government. It is learnt huge losses were incurred by the potato farmers and other entities by this restriction. Before coming to power, the BJP had assured the farmers for the lifting of the restriction. On the other hand, West Bengal decided to hand over the cases related to the teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the Central Bureau of Investigation. Gold and silver prices today witnessed a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to latest reports. The government has raised the import duty, including cess, on gold and silver from 6% to 15%. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates, UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West of the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues,
4: in particular energy cooperation. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज शाम के 6:11:03 और ये वक्त होता है आपके सफर का, हम सफर बनने का। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आपके घर तक के सफर का हम सफर होता है इस वक्त। और कहते भी कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहिए जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर लगता है आज आपको कि आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है आज के दिन, तो ये सोच लीजिए कि आज का दिन ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी हर रोज सुबह शुरू होती है और शाम को घर की ओर रुखसत करती है।

कहते हैं मेहनत कभी जाया नहीं होती, देर से ही सही पर रंग लाती है। जो दिल से करता है कोशिश, सफलता उसे मिल जाती है। अब ये सफलता किसी रूठे हुए को मनाने की हो या फिर कुछ खोया है ऐसा जिसे पाने की हो। अगर किसी को नाराज करके गए हैं जनाब सोफे ऑफिस, तो अब शाम हो गई है, जाकर मना लीजिए ना उसे।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिकसस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडुराज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवीके सर्वकारेण सहज बहुमतेन शक्षिपरीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से ये गीत गाया है नेहा कक्कड़ ने। शब्बीर अहमद के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है तनिष्क बागची का।

अगला गीत सुनिए, अ जेंटलमैन फिल्म से बैनी दयाल और शिरली सेठिया की आवाज़ है, वायु ने लिखे हैं बोल और संगीत है सचिन जिगर का।

अगली फिल्म है रूही, जिसका गीत गाया है शामूर और रश्मीत कौर ने। आईपी सिंह और सचिन जिगर ने लिखे हैं इसके बोल, और संगीत भी दिया है सचिन जिगर ने।

शेरशाह फिल्म से अगला गीत सुनिए, जुबिन नौटियाल और आसीस कौर की आवाज़ है और इसके गीतकार व संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

और अब सुनिए बर्फी फिल्म से ये गीत गाया है श्रेया घोषाल, निखिल पॉल जॉर्ज ने और स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं इसके बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं
2: ये आकाशवाणी का शुभ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान
1: प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

0: भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स हैं। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा और शाम 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन प्रस्तुत होगा, जिसके लेखक वसीम खान और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल हैं। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित गिरिराज के सितार वादन का आनंद लीजिएगा। राग होगा रागेश्री। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 14 मई की सभा में। सबसे पहले सुबह 11 बजे तक आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन प्रस्तुत होगा और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा।

वह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर नाटक आसमां और भी हैं सुनिएगा। कल सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। कल सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12:00 2:30 और कल रात 10:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की पहली कड़ी सुनिएगा। कल दोपहर 1:00 महिला सभा, दोपहर 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी जबलपुर के योगदान में सुनेंगे। कल शाम 5:33, 6:30, 8:15 और रात 9:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत होगा। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। कल रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित विदुर मलिक की आवाज़ में ध्रुपद गायन का आनंद लीजिएगा। राग होगा केदार। इसी के साथ कल और आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख, आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की, मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त, 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए। और किसानों को बड़ी राहत, खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा, 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉ. यादव ने सभी मंत्रियों व अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए, इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CBSE ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी CBSE की वेबसाइट डिजी लॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। डॉ. यादव ने प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
1: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
0: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिब्वेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया।

0: गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में अपलोड करें, साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इससे देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4000 ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को 10,000 रुपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और एनएचआई अधिकारी ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत, तालाब, बोरी, बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552 जी सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का लेख। आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम। काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की। मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त। 25 करोड़ बहनों के खातों में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा। 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना। जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल पर बैठे सगे भैया मेनन खान नंदिनी की राम राम। भैया देखो, भविष्य बचावे के लाने बेटी को संरक्षण बहुत जरूरी है। आज बेटियां हर वो काम कर सकती हैं जिसके लाने माँ बाप बेटों पर निर्भर रहे थे। जैसे भैया बेटियों को भी वही संस्कार दें जो हम अपने बेटों को दिए थे, वही लालन पालन करें, वही शिक्षा दें जो हम अपने बेटों के लाने सोचे थे। भैया ये सोच के लाने हम सभी को परिवर्तन लानो होगो और जाके लाने ठोस कदम उठाने होंगे। देखो भैया, बेटियां अगर शिक्षित होती हैं तो वे दो घरों और परिवारों को शिक्षित करती हैं, दोनों परिवारों को बांध कर रखती हैं। भैया आज के समय में बेटा बेटी में कोनो भी फर्क नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज लोगों की सोच बदल रही है, बालिका शिक्षा आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। भैया बेटी और बेटे को समान अवसर, प्यार, शिक्षा और अधिकार दोनों, यह आधुनिक युग की आवश्यकता है। और भैया शिक्षित हो वो हर इंसान के लाने जरूरी है। देखो भैया, शिक्षित व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। जैसे अपनी बेटी को शिक्षित करनो बिने आगे बढ़ानो बहुत आवश्यक है। भैया आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कोनो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शिक्षा को महत्व है। और आज को युग वैज्ञानिक युग है, जहाँ दिन प्रतिदिन तकनीकें, आधुनिक तकनीकें विकसित हो रही हैं, नए नए यंत्र उपकरण बन रहे हैं जिसे हर काम आसान हो रहा है। देखो भैया, शिक्षा के बिना हम सबको विकास नहीं हो सकते। भैया बेटियां आगे बढ़े, समृद्धिशाली बने, जाके लाने शिक्षित हो वो बहुत जरूरी है। बेटा हो या बेटी हो, आज के समय में सब बराबर है। आज को समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। अब भैया बेटा या बेटी दोनों को समान रूप से शिक्षित करनो और जीवन में आगे बढ़ानो और बराबर के मौके देने चाहिए। भैया यह धारणा गलत है कि केवल बेटा ही बुढ़ापे को सहारा है, वह वंश चलाते। भैया बेटियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं और सक्षम होती हैं। भैया बेटा अगर परिवार को तन है तो बेटी मन, दोनों ही खुशियों को आधार है। बेटियां आज के समय में दोहरी भूमिका निभा रही हैं। भैया समाज में बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें समान अधिकार देने को बढ़ावा देना चाहिए। आज की बेटियां आत्मनिर्भर हैं और परिवार के लाने गर्व को कारण बन रही हैं। बेटा ही नहीं, बेटियां अपने माँ बाप को नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। भैया बेटियां जो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं और हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और संगे नाम बढ़ा रही हैं। यदि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे तो बेटी को भी बेटे जैसा अवसर देंगे तो यकीनन ही बेटी हमारी संस्कृति को बचाएगी और अपने आगे आवे वाले कल को भी, काहे कि वे केवल शिक्षा में ही नहीं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। भैया हम बेटे और बेटी को अच्छे संस्कार दें, बेटन को नारी को सम्मान कर वो सिखाएं, जिसे जो उन बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं बिनको अंत हो सके। सोचिए अगर बेटी नहीं होगी तो बहन नहीं होगी और ना माँ होगी और ना सम्मान होगा। समाज में बेटा बेटी एक समान की सोच को बढ़ावा देनो अत्यंत आवश्यक है भैया जा समय, ताकि एक प्रगतिशील और समानता पर आधारित समाज को और अच्छे समाज को हम निर्माण कर सके। तो भैया देखो, हम चर्चा को देते हैं तई विराम और सुनाते कछु संत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भैया जी, संदेश के बाद हम चाह रहे हैं कि अपने बहन को एक अच्छो सो लोकगीत सुनवाएं और लोकगीत के बाद हम फिर से बतराएंगे। तो भैया सुनाते जो लोकगीत।

भैया देखो, अबे लोकगीत सुनो, जाएगा वह तो उर्मिला पांडे ने। भैया देखो, कृषि के आधुनिक तकनीक को उपयोग करके अपने किसान भैया अपनी उत्पादकता, फसल की गुणवत्ता और अपने आय में अच्छी खासी वृद्धि कर सकते हैं, अच्छी आय कमा सकते हैं। भैया जे न केवल पारंपरिक खेती की समस्याओं को समाधान करते हैं, बल्कि खेती को टिकाऊ और लाभदायक भी बनाते हैं। भैया कृषि में हम आधुनिक तकनीकें कई तरीकों से अपना सकते हैं, जैसे सटीक खेती। ये जो तकनीक है वह जीपीएस सेंसर और उपग्रह चित्रों को उपयोग करके मिट्टी और फसलों की ज़रूरतों के अनुसार उर्वरक, पानी और कीटनाशक को उपयोग सुनिश्चित करते हैं। और एक आधुनिक तकनीक है ड्रोन तकनीक। भैया जा की मदद से खेती में कीटनाशकों को छिड़काव, फसल की निगरानी और स्वास्थ्य को आकलन तेजी से और समान रूप से करो जा सकते हैं। और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, ये भी एक तकनीक है भैया। भैया ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल जैसे तरीके से पानी की 40 से 60% तक बचत कर सकते हैं और फसलों को पर्याप्त पानी और नमी प्रदान ये सिंचाई करते हैं। और नैनो उर्वरक, पारंपरिक ऊर्जा के बजाय नैनो यूरिया को उपयोग पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और जो डिजिटल कृषि है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन की को उपयोग करके कृषि संबंधी जानकारी, मंडी भाव और फसलों की सही मार्केटिंग करी जा सकते हैं। जैसे भैया आधुनिक तकनीकों अपनावे में बहुत से लाभ भी हैं, जैसे लागत में कमी आते हैं, मशीनीकरण और सटीक कृषि

0: से उत्पादन लागत कम होते है, कम रसायनों को उपयोग और टिकाऊ खेती को बढ़ावा भी हमें मिलत है और संगे संसाधनों की बचत भी होते है। पानी, खाद और कीटनाशकों को सही मात्रा में हम उपयोग कर सकते हैं। भैया, उन्नत बीजों और तकनीकों के फसल उत्पादन में काफी वृद्धि भी होते हैं। और भैया, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से किसान भैयन को फसलों और पशुधन को उत्पादन बढ़ावे में मदद सोई मिलत है। जैसे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तो भव है और नई तकनीक के उपयोग से उत्पादन लागत में कमी भी आई है और नई तकनीक को अपनावे से कृषि उत्पादों के विपणन और वितरण के नए तरीके विकसित भए हैं। तो भैया, हम अपभियान से जो ही कहेंगे कि भैया आधुनिक तकनीकन को अपनाएं और फसलों की अच्छी फसल की उत्पादकता में वृद्धि करें और अच्छी फसल उगाएं। और भैया देखो, हम चर्चा आगे करेंगे और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से रोज कोई ना कोई जानकारी लेकर आते हैं। तो आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह को विषय है जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण एवं उपचार। यह वार्ताकार हैं डॉक्टर पंकज शर्मा और इनसे बता रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। भैया, जो भेंट वार्ता है यह पुनः प्रसारित है, तो सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, चौपाल कार्यक्रम में हम आपको तरह तरह की भेंट वार्ताएं सुनवाते हैं, जानकारियां देते हैं और ये सब आपके जो व्यवसाय है खेती से संबंधित उसको तो प्रभावित करता ही है, उसमें आपको ज्ञान देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि खुद का स्वास्थ्य। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे आप जीवन को आगे चला पाएंगे या आपका जो व्यवसाय है आप उसे कैसे सही ढंग से स्मूथली चला पाएंगे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले तो खुद का स्वस्थ। अब स्वास्थ्य की बात करें तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसी के हिसाब से तरह तरह के चिकित्सक हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है हड्डियों के जोड़, कारण, लक्षण और उपचार। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां और हड्डी से संबंधित कई बार जोड़ों में, जॉइंट्स में दिक्कत आने लगती है और दर्द होता है और दर्द होने के कारण फिर हम जो भी हमारा काम है वो बेहतर तरीके

0: विशेषज्ञ कहा जाए, विभागाध्यक्ष कहा जाए, डॉक्टर पंकज शर्मा आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर के साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। डॉक्टर साहब सभी सुनने वालों के बीच में स्वागत करते हैं।
1: सभी को मेरा नमस्कार
0: जी। डॉक्टर साहब जैसा कि विषय मैंने बताया कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, परिपक्व होता है आदमी इंसान, कई तरह की औरतों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोग आने लगते हैं और एक अमूमन जो रोग आया वो जोड़ ज्वाइंट्स पेन, तो ये क्यों होते हैं और पहचान क्या है कि ये ज्वाइंट्स पेन है, इस विषय में।
1: जितने भी जोड़ हैं शरीर के, वो जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारा चलना फिरना बैठना सभी जोड़ों से होता है। तो जोड़ों की बेसिकली जो बीमारी है वो बुजुर्गों में होती है, 60 वर्ष के बाद।

0: शरीर के किसी भी जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि कंधे का है, कोहनी का है, कलाइयों का, और हम आम तौर पे देख रहे हैं कि घुटने का दर्द लेके ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और हमारे पास आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, चलने का आपने जिक्र किया, तो चलने का संबंध तो सिर्फ पैरों से है, लेकिन जॉइंट्स तो हमारी एल्बो भी हो सकती है। एक बीमारी का नाम लेते हैं हम लोग टेनिस एल्बो, जो खिलाड़ियों में ज़्यादातर आती है, और खिलाड़ी यूथ होगा, तो किसान परिवार में उसका जो बच्चा है, जो यूथ है, लेकिन समय के साथ पिता के साथ वो व्यवसाय में मदद कर रहा है और फिर वो श्रम साध्य काम कर रहा है, तो उसको भी ये संभावना हो सकती है। कोई भारी चीज़ उठा रहा है, वहाँ पर भी जॉइंट्स का पेन हो सकता है, हमारी एल्बो में हो सकता है, हमारी कलाई के जोड़ में हो सकता है। तो पहचाने कैसे? आपने कहा दर्द, कई बार दर्द आदमी पहचान नहीं पाता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक दर्द होगा?
0: देखो, कोई भी जोड़ है वो एक तो जोड़ के पास दो हड्डियों का मेल होगा, साथ में उनको जोड़ने के लिए तंतु होंगे एवं मांसपेशियां होंगी। तो जोड़ का दर्द और जोड़ के आसपास का दर्द, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जोड़ यानी कि हड्डियों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से है, उनके ऊपर जो चिकनी लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसके जोड़ मतलब बीमारी में इन्वॉल्व होने के वजह से, या उसके आसपास की मांसपेशियों के वजह से है। तो मांसपेशियों का जो दर्द होगा वो जॉइंट के आसपास तो होगा, लेकिन वो जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको इतना प्रभावित नहीं करता है, मूवमेंट कर पाता है व्यक्ति। लेकिन अगर जोड़ के अंदर है तो वहाँ सूजन आएगी और उसका जो चिकनी लेयर है उसमें भी खराबी आएगी, तो उसकी मूवमेंट भी प्रभावित होती है, यानी कि उस हाथ को चलाने में उसको तकलीफ होगी। जैसे आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया, तो ये एक तरह का जो टेनिस एल्बो है, ज़्यादातर यंग अवस्था में लोग या फिर 30 से 40 या 50 वर्ष के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका नाम टेनिस एल्बो के साथ साथ इसको ओवर यूज सिंड्रोम भी कहते हैं, मतलब किन्हीं मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग कर लिया, जैसे टेनिस खेलने वाले, तो नॉर्मली इसका नाम टेनिस खेलने वाले दिया है, लेकिन ये उन महिलाओं में जो खाना पकाने के लिए भारी कचड़ी का उपयोग करती हैं या फिर भारी झाड़ू उपयोग करती हैं, तो उनमें भी टेनिस एल्बो हो जाता है। तो अगर जोड़ इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें सूजन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर तंतु इन्वॉल्व हुआ है तो वो उस पॉइंट पे पेन देगा, उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें वो मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। दोनों के इलाज में भी कहीं ना कहीं अंतर होता है।
1: अब क्या इनका इलाज वर्तमान में संभव है?
0: देखो, जो अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और उनका निरंतर उन पर शोध का कार्य चल रहा है कि और अच्छे से अच्छा क्या इलाज हम कर सकते हैं। साथ ही इस पर भी शोध चल रहा है कि उन बीमारियों को शुरू में ही रोका जाए जिससे वो बीमारियां ना हों। जैसे हम घुटनों के दर्द की अगर बात करें, तो हमारा जो घुटना है वो 40 वर्ष के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ा लक्षण देने लगता है, मतलब कहते हैं कि जी बुढ़ापा का पहला जो है ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम इस चीज़ को भांप लें और हम अपने जीवन की जो दिनचर्या है, अपने खान पान का व्यवहार है, कसरत है, व्यायाम है, अच्छा भोजन है, जिसमें कि कहें कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, तो इन रोगों को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं या इनकी गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे कि उम्र के साथ आए तो लेकिन बहुत धीमी गति से आए। जैसा कि हमने देखा है कि एक 80 वर्ष के बाबा जी हैं, उनके घुटनों में बदलाव तो बहुत है लेकिन वो कभी दर्द नहीं कहते और रोज़ घूमते रहते हैं और कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, भले ही वो हड्डियाँ उम्र के साथ टेढ़ी हो रही हैं। तो वो रोग उनको धीरे धीरे आया है ना, तो उसको रोग ना कह के उसको हम कहते हैं कि जीरियाट्रिक प्रॉब्लम है,
1: समय का बदलाव।
0: लेकिन वही प्रॉब्लम या वही बदलाव अगर 60 वर्ष पर ही आ जाएगा तो व्यक्ति का घुटना धीरे धीरे और ख़राब होगा और आगे चल के उसको बदलना भी पड़ सकता है,
1: नी रिप्लेसमेंट पे जाना
0: पड़ सकता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम

0: प्रेशर से बचना चाहिए ताकि संभावना को थोड़ा लंबा किया जा सके।
1: देखो, हड्डी के बारे में कहा गया है कि हड्डी का जो निर्माण है वो 30 से 35 वर्ष तक होता है, मतलब उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो 35 से 40 वर्ष तक बनती है।
0: यानी हड्डी पूर्ण युवा 40 की उम्र में होती है।
1: 40 की उम्र तक उसमें हम जैसे

0: जोड़ते हैं वैसे हम उसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों में ही प्रतिवर्ष हम माने तो 0.5% के हिसाब से हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाती है
1: पर ईयर।
0: तो इसका मतलब ये है कि जो धन हमने कमाया है यानी कि जितनी हड्डी हमने मजबूत की उसको हमें आगे उपयोग करना है। तो जिन महिलाओं में या पुरुषों में जिनमें हड्डियाँ शुरू से कमजोर हैं तो संभावना है कि उनको हड्डियों के रोग और जोड़ों के रोग जल्दी उम्र में ही आ जाएंगे। और जिन्होंने अच्छी मेहनत की, अपना अच्छा व्यायाम किया, अपने शिक्षा के साथ साथ शारीरिक पे भी ध्यान दिया, या जो खिलाड़ी हैं उनका बोन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आप देखेंगे कि लंबे उम्र तक भी उनके हड्डियों और मांसपेशियाँ उनको परेशानी नहीं देती हैं। तो प्रिवेंशन में यही कहना है कि हमें शुरू में कमाना है, अपने हड्डी को प्यार करना है। हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे फास्ट फूड पे जा रहे हैं जिसमें कि कोई पोषक तत्व तो नहीं है, तो उनका हम क्या सोच सकते हैं कि उनका हड्डी का निर्माण उतनी मजबूती से हो पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 30-35 तक बनना है, अगर 20% कमाया तो उसी में से आगे खर्च करना है, और 100% कमाया तो उसमें से आगे बढ़ना है। और महिलाओं में और प्रॉब्लम है, जैसे महामारी बंद होने के बाद शरीर में हार्मोन होता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी अगर कमी होना चालू हो जाती है तो महिलाओं में वो 0.5% की बजाय अब 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से हड्डियां कमजोर होना लगती हैं।
1: हमने समस्या थोड़ी जो नेचुरल प्रोसेस है उसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा है।
0: गाँव में हमने अपनी दादी या किसी महिला को देखा है कि वो झुक के चलती हैं, पुरुष कम मिलेंगे महिलाएँ ज़्यादा, क्योंकि वही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, हड्डियां कमजोर रहीं और समय के साथ साथ वो झुकना चालू कर देती हैं। तो जी
1: ये समस्या है। शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज एक शिवपुरी के लोगों के लिए, शिवपुरी ज़िले के लोगों के लिए और आसपास के अंचल के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। आप इसके अस्थि रोग के रूप में विभाग अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या मुनासिब कब उसको जाना चाहिए ताकि वो इलाज करा सके, आपसे मिल सके, आपकी टीम से मिल सके और वो स्वस्थ हो सके?
0: जब से मैंने ये मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और अस्थि रोग से संबंधित या उनके अवेयरनेस जागरूकता के लिए कई हमने चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है। रिमेटोलॉजी, जैसे आप जोड़ों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण जोड़ों के इलाज के लिए एक अलग ही क्लिनिक हम वहाँ चला रहे हैं सरकारी में,
1: मेडिकल कॉलेज,
0: हाँ, जिसको ऑर्थो रिमेटोलॉजी नाम दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि वो रिमेटोलॉजी के 10-12 मरीज जो कहीं दूरस्थ इलाकों से बड़े शहरों में इलाज कराने जाते थे वो आज मेरे पास आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे, उनकी जांचें हो रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी काउंसलिंग हो रही है। क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं और मरीज हताश होता है, कभी इस डॉक्टर को दिखाएगा, कभी उस शहर में जाएगा, तो पहला हमारा काम होता है उसकी काउंसलिंग करना कि अब आज से आपको कहीं जाना नहीं
1: mentally
0: है,
1: उसे prepare
0: mentally प्रिपेयर करना जिससे वो दवाई ना छोड़े और डॉक्टर से नियमित सलाह ले। क्योंकि इस व्यस्तता के शेड्यूल में हम देखते हैं कि प्रतिदिन 200 मरीज आते हैं ऑर्थो में, तो हम ऐसे में उन मरीजों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में मंगलवार का दिन मेरा चूँकि थोड़ा सा फ्री रहता है या कम वर्क रहता है, तो मैंने वो अलग से रूमेटोलॉजी क्लिनिक अलग से संचालित की है जिससे लोग यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं वो आएँ, एनरोल करें।
1: यानी कहने की तात्पर्य यह है कि शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भी जो अस्थि रोग से संबंधित या हड्डियों के जोड़ से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, एक आम इंसान की समस्याएं हैं, उसका इलाज संभव है, जहाँ पर आप और पूरी टीम के साथ हम व्यक्ति इलाज करा सकता है। खान पान का ध्यान किस तरह का रखे कि उसे जोड़, मतलब कौन सा विटामिन या कौन सी सब्जियों पर उसे फोकस करना चाहिए ताकि कम से कम दर्द हो?
0: जोड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा तत्व जो शरीर के अंदर जो टूटन है उसको करेक्ट करें, उसको सही करें। तो बच्चों में ये प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उनको चोट भी लगती जल्दी हील हो जाता है। एडल्ट में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं चोट लगी और 2-4 दिन में ठीक हो जाते, बैलेंस कर लेता है, लेकिन फिर 40 के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट जो अच्छा वाला तत्व है वो कम होना चालू होता है, और उसके कम होने से खराब वाला बढ़ता है तो वो डैमेज करना चाहता है। ये अच्छा तत्व हमारी हरी सब्जियों में, सभी फलों में, दूध में और बिना मिलावट वाला भोजन करने से इन सब तत्वों से हम बढ़ा सकते हैं। जिसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, जैसे मैंने पहले भी बताया, शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे लिगामेंट मजबूत हैं। जितनी मोटी रस्सी होगी जोड़ों के आसपास उतना हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और उतना जोड़ों की समस्याएँ कम रहेंगी।
1: लिगामेंट्स रेप्चर नहीं होने चाहिए, खान पान बेहतर होना चाहिए और थोड़ा वक्त अपने शरीर के लिए भी वर्जिश के मोड में दें। यही कहना चाहते हैं ना कि कसरत करें,
0: डेली कसरत

0: कि थोड़ी कसरत डेली ज़रूरी है, और कसरत के लिए कहीं जाने घर में ही आसानी से हो सकती है। अगर आप डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक भी करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, थोड़ा सा तेज़ चहलकदमी करते हैं, तो वो भी काफ़ी होता है इसके लिए।
1: बातचीत बहुत अच्छी हुई। हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे श्रोता इस हड्डियों के जो जोड़ से संबंधित समस्याएं जो आम इंसान में आती हैं और बचने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज इसके लिए है, वहां पर वो संपर्क कर सकते हैं, अस्थि रोग विभाग में जा सकते हैं और उसका इलाज होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ बातचीत में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: भैया देखो, अब अपन सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय है तो जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। वार्ताकार थे डॉक्टर पंकज शर्मा और इनसे बता रहे थे अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। और ये भेंटवार्ता जोन हती वो पुनः प्रसारित हती। भैया देखो, डॉक्टर साहब ने कितनी एक अच्छी जानकारी दी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने हैं, और हम उम्मीद करत हैं कि हमारे भैया ने सुनी हुई है और बिल्कुल लाभ भी जरूर लेंगे। भैया अब हम चाह रहे हैं कि अपने बहन को अच्छे से एक और लोकगीत सुनवा दे, तो सुनते हैं लोकगीत, जय गाँव है राजू पटेल और

भैया राष्ट्रीय बांस मिशन भारत सरकार द्वारा 2018 में पुनर्गठित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो योजना 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बांस की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और किसानों की आय बताने पर केंद्रित है। भैया यह मिशन बांस के उत्पाद, कौशल विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देते हैं, जिसके तहत 2025-26 के लिए कृषि भूमि पर बांस पौधारोपण हेतु 50 रुपए प्रति पौधा या 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। भैया राष्ट्रीय बांस मिशन की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे बांस क्षेत्र का समग्र विकास, घरेलू बांस उत्पादन और बढ़ावा और आयात पर निर्भरता कम करना है, और यह एक केंद्र राज्य साझा योजना है जिसमें 40% केंद्र और 40% राज्य सरकार को योगदान होता है। भैया राज्यों में स्टेट बंबू मिशन या राज्य बांस मिशन एजेंसियों के माध्यम से जाको संचालन करो जाते। भैया ये मिशन को लाभ भी है, जैसे बांस की खेती अप भैया कर सकत है और इनकी आय में वृद्धि होत है। भैया ग्रामीण स्तर पर बांस आधारित उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, अगरबत्ती, फर्नीचर के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलत है। भैया अब हो रही है चलवे की बेरा, तो नंदिनी को दो आज्ञा। राम राम, जय जय।

0: के प्रमुख निर्णयों पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बड़ी खुशी हुई।
0: शुभमय, आज के कैबिनेट मीटिंग में जैसा कि हमने देखा, कई ऐसे निर्णय लिए गए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आगे आने वाले वर्षों में या कहें समय में एक विकसित भारत को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है फॉर द अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इन्होंने बात की है कि वो लाइसेंस

0: प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी। तो कैसे आप देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमें पता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि चारों ओर पूरे देश में खास करके, और उड़ान के बारे में भी हम जानते हैं, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको?
1: जैसे आप सही कह रहे थे जी कि ये सिर्फ वेस्टर्न इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि रेलवे के लिए नागपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे भारत के सारे रेल लाइन उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण से आके मिलते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए अगर हम जिससे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का आवागमन अगर हम देखें भारत के किसी जगह पे, तो इस क्षेत्र से वो जरूर होके गुजरता है। इसीलिए ये वाला सेक्टर को और ये वाला सेक्शन को कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी महत्व दिया गया है और रहा भी है, पुराने दिनों में भी और आज के दिन में तो खासकर। तो हम जब कहते हैं कि भारत में सारे प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होने चाहिए, इजी मूवमेंट होने चाहिए, तो नागपुर अपने आप में एक चुनिंदा जगह बन जाता है, जिसलिए नागपुर का जो एयरपोर्ट है खासकर कार्गो एयरपोर्ट, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेशनल बोइंग कंपनी ने नागपुर को ही चुना है अपने मेंटेनेंस ऑपरेशंस एशिया में और साउथ एशिया में खासकर चलाने के लिए इसी जगह पे। तो ये एक अपने आप में अपने एक एविएशन हब के रूप से बन गया है, और जो आज के कैबिनेट का जो अप्रूवल है उसमें भी इसकी रिकग्निशन है कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट जो नागपुर में बन चुका है। 2009 से ये जॉइंट वेंचर कंपनी बना था और तब से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का और इस एयरपोर्ट का इन सब चीजों को मिलाकर बहुत ही सिग्निफिकेंस है। हालांकि हम पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और लोग जनरली देखते हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट में मिलियंस ऑफ लोग मूव करते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो नागपुर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट है।
0: जी शुभ मैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उत्कृष्ट कह सकते हैं ये उदाहरण है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मौके पर।
2: पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: और हम बात करते हैं, अब कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है आज, न्यूनतम समर्थन मूल्य का 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए विपणन वर्ष 2026-27 को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें मुख्य तौर पर किसान हमारे रेनी सीजन पर, वर्षा पर कितना ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और कुछ जो डिसीजन लिए गए हैं इसमें, उसमें सबसे अधिक जो है वो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है फॉर द सनफ्लावर सीड, जो कि लगभग 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और उसके अलावा और भी हम देखेंगे कॉटन के लिए और सेसमम के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और 500 रुपये प्रति क्विंटल क्रमशः। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, 14 जैसा कि हमने पहले बात की कि 14 क्रॉप्स हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं और किसानों को कैसे इससे लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं?
1: खासकर आप ये चीज हम जानते हैं कि इस साल वैसे ही पूरी दुनिया में काफी अफरा तफरी मचा हुआ है और सारे दुनिया में इन्फ्लेशन और डिस्टर्बेंसेस बहुत बड़ी मात्रा में आ गया है। तो वहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से ही नहीं साथ में इनकम का भी रचना बहुत मायने रखता है, कि क्योंकि हमारे करीब 48% हमारे वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में बने हुए हैं, जिसका काफी ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर में ही रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए एक अगर हम देखें कि कितना उनके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, उनके लिए कितना इनकम जनरेटिंग रहेगा उनका जो काम काज है, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सरकार ही खरीदेंगी, लेकिन जैसे ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर मूंग इन सभी चीजों में बिजनेस पीपल आके ही खरीदते हैं, लेकिन जब रेट एक सरकार की तरफ से तय हो जाता है कि इतने रेट से अगर कम हुआ तो सरकारी एजेंसियां वो चीजों को खरीद लेंगे,

0: एक भरोसे का सिक्वेंस बन जाता है फार्मर्स के लिए, उनके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने रेट में हमको मिलेगा
1: जी।
0: और ये इसका घोषणा होना सही समय पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनको ये प्राइसेस आगे चल के क्या प्राइसेस रहेंगे उस प्राइस का एक अंदाजा बन जाता है, एक क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप सनफ्लावर की बात कर रहे थे, साथ में ज्वार की, पैडी वगैरह का, तो ऑफकोर्स है क्योंकि पैडी भारत के विभिन्न जगह पे पैडी का कल्टिवेशन होता है,
1: बिल्कुल
0: बाजरा है, लेकिन साथ में जो दाल, दाल का जो प्रोडक्शन है, दाल का जो उनका जो रेट्स है, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर क्या रेट बनता है, उनको किस रेट में दिया जाता है
1: जी।
0: तो इन सब चीजों का जो रेट का जो राइज है, कितना परसेंटेज किया जा रहा है, उसका कितना बारीकी से करते हैं। खासकर मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का दृष्टिकर्षण करूंगा कि हमारे सारे श्रोता के में खासकर एक बहुत बड़े जो फार्मिंग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसका अनाउंसमेंट और इसका प्राइस क्या बना बहुत ही मायने रखता है कि कितने परसेंटेज राइज इस साल दिया गया। ये तुलना अगर करें
1: जी जी,
0: तो सरकारी क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पे कमीशन के अवार्ड से ये इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के पैमाने के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके लाइफ के, जैसे कॉटन के प्राइसेस जो है, इन सभी चीजों के प्राइसेस कितना बनेगा, इससे हमारे कृषि क्षेत्र कितने शक्तिशाली रहेंगे, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, वो सब इससे जुड़ा हुआ है।
1: जी जी शुभ मैं, और आइए सुनते हैं मंत्री महोदय ने क्या कहा इस अवसर पर।
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए, और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया आज के कैबिनेट मीटिंग में वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कि वित्तीय आउटले अगर हम कहें तो 37,500 करोड़ रुपए है। तो शुभ मैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपने भी अभी चर्चा किया पीछे की, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, एनर्जी क्राइसिस खास करके अगर देखें, तो वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर अगर हम इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा इस विषय पर।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
1: तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। शुभ मैं, कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले समय में, जैसा कि मंत्री जी बात कर रहे थे, ये एक काफी बड़े तौर पर और बड़े पैमाने पर सामने उभर कर आ सकता है एज एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से।
0: मैं सबसे पहले बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एक कोल से, हालांकि कोल और क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मोर और लेस वो एक ही चीज से बनता है। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें से एक मिक्स्ड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर, इन सब को यूज करने से ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे बेनिफिट मिलता है।

0: तो हम नेचुरल गैस का भी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात की बात कर रही है। हम इंपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अफरा तफरी की वजह से गैस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए हर तरीके में ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल गैस जैसे ही काम आ सकता है कोल गैस। तो ये कोल गैस जो है इसका टेक्नोलॉजी पता है, इसका टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए हम सोच रहे थे कि करे ना करे। खासकर कुछ महीने पहले तक चल रहा था कि कोल को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, एट ऑल करना चाहिए या नहीं। हालांकि एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल को अगर यूज करना है और कोल गैस बनाकर, तो वो एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोल से जो उत्पन्न होता है जो पोल्यूशन वो काफी हद तक उतर जाता है कोल गैस बनाने से। और जैसे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कोल का हमारे पास चूंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हमारे पास है देश में, तो हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने आप को जैसे कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी में पा सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी एनर्जी अभी इस दुनिया में ये 21वीं सदी का एक मूल मंत्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी इस दोनों का मिश्रण देश के लिए एक जैसे कहते हैं एसेंशियल चीज बन गया है। अपने निर्भरता, अपने अपने इकोनॉमी को आगे तेजी से ले जाने के लिए, सब कुछ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: इसमें ये जो 37,000 करोड़ का जो कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट्स में आने के लिए सुविधा होगी। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि आपको हम एक सीड कैपिटल देंगे, एक सपोर्ट देंगे, इसके बेसिस पे आप अपना काम आगे ले जाइए। और अगर हम आगे अगर चले तो दिस गुड बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर।
1: जी जी जी, शुभ है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में आज, गुजरात के अहमदाबाद से ढोलेरा तक एक सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट भी जिसको मंजूरी दी गई, जिसका कुल लागत मूल्य 20,667 करोड़ रुपए है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यूनिक भी है, इसलिए कि ये देश का ये पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये किया जा रहा है। हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से रेलवे का जाल नेटवर्क जैसा बिछाया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जो इस मंजूरी मिली है, ये कैसे देखते हैं आप इसको?
0: इसको अगर आप उससे अगर आप लिंक करें कि ये जो प्रोजेक्ट है
1: जी,
0: ये ढोलेरा से आ रहा है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
1: जी जी,
0: अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना बेस सेटअप कर रहे हैं। तो ढोलेरा से अहमदाबाद का कनेक्टिविटी हाई स्पीड होना जरूरी था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन बन रहा है, तो वो बुलेट ट्रेन से अगर हम मुंबई से अहमदाबाद लोगों का जैसे कनेक्शन रहेगा, साथ में उनको एक इमीडिएट कनेक्शन जरूरत पड़ेगा ढोलेरा तक जाने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र की कंपनियां इस रीजन में अपना इन्वेस्टमेंट सेटअप कर रहे हैं। तो ये वाला एक जिसे कहते हैं मिसिंग लिंक या था, जो अभी जिसका पूर्ण किया जाएगा, तो इसका तो बहुत ही इसका कितना महत्व है वो आने वाले दिनों में है बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा जो रीजन है इस रीजन में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बहुत जरूरत है, जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: शुभ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए हमारे श्रोताओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का, और सुनिए आमिर जमाल की आवाज में ये गीत मर्डर फिल्म से, जिसे लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

और अब अगली आवाज सुनिए किशोर कुमार की सफर फिल्म से। ये गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, शराबी फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ है, अनजान के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में सजाया है बप्पी लहरी ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब समय है सूचना का। जनहित में जारी सूचना ध्यान से सुनिए। भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सूचना अब समाप्त हुई।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
6: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके

0: उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
3: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख

0: रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026.

0: Şaka bir şey.
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ONGC के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र।

0: तनेजा, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स साला।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी SPR की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा।
4: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
2: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा. इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कन्फर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी. तो इंडिया को एक्चुअली, चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो,

0: उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की

0: जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या हैं और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by a strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी

0: सोलर की बात है या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है. ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट्स से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए. और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें. तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी. तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ.
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर.
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं. अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है. लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है. लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में. एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं. तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के

0: निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट हैं तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, जिसके लेखक हैं वसीम खान और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल हैं।
1: प्रस्तुत है वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: लीजिए पंडित जी, आ गई आपकी मंजिल। थोड़ी बहुत दुआ हमारे लिए भी कर लेना साहब।
1: आशीर्वाद है, सुखी रहो। पैसे कितने हुए?
0: बस 140 रुपया।
1: अरे क्या पागल हो गया है, इतनी सी दूर के 140 रुपए?
0: पेट्रोल नहीं देख रहा है, कहाँ जा रही है?
1: अरे पंडित आदमी को पेट्रोल से क्या मतलब, ले पकड़।
0: ये क्या है?
1: 50 का नोट है और क्या है?
0: अरे 50 रुपए के तो 2 दर्जन केले आते हैं।
1: केले? तो
0: आप जहाँ से चले हो ना मियाँ, वहाँ से यहाँ तक ढाली ढाले,
1: तो
0: 2 दर्जन केले ले लेते, खाकर सेहत बनाते, छिलके आगे डालकर फ्री में ही यहाँ तक पहुँच जाते।
1: क्या कह रहा है
2: पंडित जी? पंडित जी नमस्कार। क्या हुआ भाई?
1: अरे इस ऑटो वाले को देखो, ईदगाह हिल से न्यू मार्केट के 140 रुपए मांग रहा है।
2: चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पंडित जी। ये लो भाई, खुश।
0: अरे काय के खुश साहब, सारी कमाई तो पेट्रोल पी रिया है।
1: चल चल आगे बढ़।

0: आइए आइए, यहाँ यहाँ यहाँ बैठिए
1: जी जी,
0: बैठिए पंडित जी। मैं तो समझ रहा था कि आप 4 बजे आएंगे, आप तो 3 बजे ही पधार गए।
2: अरे भाई, 4 बजे हाथ देखने का मुहूर्त थोड़ा जम नहीं रहा था, मैंने सोचा पहले ही चलता हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया।
2: चलिए अब जल्दी से बिटिया को बुलवाइए।
0: जी जी जी। बेटा ज्योति, ज्योति। पंडित जी, मेरी बिटिया की शादी की बड़ी अटकलें लग रही हैं, जरा कुंडली और हाथ देखकर अच्छी तरह बताइए ये चक्कर क्या है।
3: अरे नमस्कार पंडित जी।
2: नमस्कार, नमस्कार बेटिया, ये बेटी है आपकी।
0: क्या बात कर रहे पंडित जी, ये बेटी नहीं, मेरी पत्नी है माया।
2: अरे सॉरी सॉरी, मेंटेन ही आपने इस तरह किया है, कोई भी धोखा खा सकता है।
0: अरे हम क्या बूढ़े लगते हैं आपको?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भी स्मार्ट आदमी हैं, लेकिन बिटिया अभी तक नहीं आई।
3: लो आ गई हमारी बिटिया।
0: बेटा ये पंडित दीनदयाल तिवारी जी हैं, बड़ा नाम है, भविष्यवाणी तो ऐसी करते हैं जैसे सारा भविष्य आंखों के सामने नजर आ रहा हो।
4: मुझे अपना भविष्य पता है पापा, और सब कुछ साफ साफ नजर भी आ रहा है।
3: चुप हो जा, जबान चलाने को कह दो, जा पंडित जी के लिए शरबत बना के ला।
4: अभी लाती हूँ।
2: प्रताप जी, अभी बच्ची है वो।
0: पंडित जी, बच्ची दिखाई दे रही है आपको?
3: पूरे 23 साल की हो गई है, अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेंगे?
2: अरे पहले उसका हाथ तो देख लें, सब ठीक हो जाएगा।
4: लीजिए पंडित जी, शरबत लीजिए।
2: प्रसन्न रहो बिटिया।
4: मैं तो हमेशा ही प्रसन्न रहती हूँ।
3: देखा देखा तुमने,
2: अरे बच्ची है अभी, बच्ची।
4: मैं बच्ची नहीं हूँ पंडित जी।
0: देखो ये तुम्हारा हाथ देखने आए हैं और तुम्हारी शादी के बारे में बताएंगे, ये लीजिए पंडित जी इसकी कुंडली।
2: लाइए बेटा, कुंडली तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, साफ साफ शाही ठाट नजर आ रहा है।
4: अच्छा पंडित जी, आपके बच्चे कितने हैं?
2: अरे हम अविवाहित हैं बेटा।
4: तो पहले अपनी शादी कर लीजिए, फिर दूसरों की शादी की भविष्यवाणी कीजिएगा।
3: ये क्या कह रही है ज्योति, पंडित जी का अपमान कर रही हो तुम।
0: अरे इसके सिर पर तो बस इश्क का भूत सवार है।
3: पंडित जी तेरी भलाई के लिए आए हैं पगली, कुंडली में तो सब अच्छा ही अच्छा है, बस हाथ और दिखाना है।
4: नहीं दिखाऊंगी मैं हाथ।
0: क्या कहा तूने?
2: अरे प्रताप जी, अरे बच्ची है ये।
4: पंडित जी मैंने कहा ना आपसे, मैं बच्ची नहीं हूँ।
2: अरे पता है बेटा, पता है, लेकिन हमारी नजर में तो बच्ची ही हो ना। हाथ दिखा दे बेटा, हम बता देंगे कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा।
4: अच्छा, 60 साल की उम्र में आपको तो कोई जीवन साथी मिला नहीं, हमारा जीवन साथी कैसा होगा ये आप कैसे बताएंगे?
2: ज्योति बेटा, हम तो शादी करना चाहते थे, कई रिश्ते आए गए, लेकिन कहीं भी रिश्ता निश्चित नहीं हो पा रहा था। वो तो एक दिन पिताजी की नजर हमारे हाथ पर पड़ी।
3: अच्छा, फिर पंडित जी?
2: अरे पिताजी ने चीख मार दी, बाकी का परिवार इकट्ठा हो गया।
0: क्यों पंडित जी?
2: अरे मेरे हाथ में शादी की रेखा ही नहीं थी।
3: तो पंडित जी अब क्या होगा?
2: अरे जिस दिन रेखा बन जाएगी विवाह हो जाएगा।
0: लेकिन इस उम्र में अब रेखा बनने का भी क्या फायदा?
2: अरे भाई इसीलिए तो अब दूसरों के विवाह की चिंता रहती है। बिटिया अब तो बता दो हाथ।
4: अच्छा ठीक है, देख लीजिए हमारा हाथ।
0: क्या हुआ पंडित जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
3: इसके हाथ में शादी की रेखा तो है ना पंडित जी?
2: हाँ रेखा तो है।
3: शुक्र है भगवान का।
0: पर आप इतने बेचैन क्यों हैं पंडित जी?
2: वो शादी के बाद,
0: आपने तो कहा था कि बिटिया शादी के बाद ठाट बाट से रहेगी।
2: रहेगी तो घर भी अच्छा मिलेगा, मगर
3: मगर क्या?
2: इसका पति शादी होते ही मर जाएगा।
0: क्या कहा पंडित जी?
2: हाँ
3: क्या पंडित जी,

0: चाय गरम चाय। अरे ये क्या, सुबह सुबह आप लोगों का मुंह कद्दू की तरह क्यों हो रहा है? चाय नाश्ता कीजिए।
1: हमारी एक ही बेटी और उसके साथ भी भगवान का ही अन्याय।
0: ओहो मम्मी, आप भी पापा की तरह घिसी पिटी बातों को मानती हो? भाई हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते।
2: लेकिन बेटा, इतने ज्ञानी पंडित कभी झूठ नहीं बोला करते।
0: तो ठीक है पापा, हमारी शादी करवा दो, बाद में देखेंगे कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है।
3: मतलब तू जीतू के अलावा और किसी से शादी करने को राजी है?
0: जी बिल्कुल, अब हमने फैसला बदल दिया है।
2: पर तुमने तो जिद कर रखी थी शादी करूंगी तो जीतू से, अचानक ये बदलाव?
0: हाँ पापा, क्योंकि हम आप लोगों को उदास नहीं देखना चाहते।
2: लेकिन बेटा, अब हम तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते।
0: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ आप लोग मुझे अब कभी उदास नहीं दिखने चाहिए, ठीक है? चलिए अब मैं चलती हूँ।
2: देखा तुमने, अचानक इसमें इतना बड़ा बदलाव।
3: दरअसल उससे हमारी उदासी देखी नहीं गई।
2: हम इसकी शादी जीतू से भी कर सकते थे, मगर दारू छोड़ना आसान होता है क्या?
3: अब शादी के बारे में सोचने से क्या फायदा, चलो ऑफिस की तैयारी कर लो।

0: अरे आ गए आप, चाय लाऊं क्या?
1: हाँ ले आओ।
2: हेलो पापा, क्या बात है, आज आप मुझसे भी पहले आ गए?
1: हाँ, ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था ना, इसलिए।
2: पता है पापा, आज फिर जीतू मिल गया था।
1: शराब पिए हुए होगा?
2: नहीं पापा, शराब नहीं पी थी उसने। पता है, सबके सामने चीख चीख कर कह रहा था, ज्योति तेरी कसम मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने शराब छोड़ दी है ज्योति।
0: ऐसा वो कई बार कह चुका है, लो चाय लो।
2: वही तो माँ, वही मैंने भी कहा, ऐसा तुम कई बार कह चुके हो जीतू। फिर उसने कहा, तुम्हें कब पीता हुआ नजर आया मैं? फिर मैंने कहा, अब तुम पियो या ना पियो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं।
1: फिर
2: क्या था पापा, उसने गुस्से में अपनी बाइक दन से दौड़ा दी।
0: तूने अच्छा किया बेटा,

0: अरे क्या सोए नहीं?
1: हाँ, नींद नहीं आ रही है।
0: क्या सोच रहे हो?
1: सोच रहा हूं अगर सभी लोगों को अपना अपना भविष्य पता चल जाए तो क्या हो?
0: पाप से भय लगेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा।
1: अरे इसका उल्टा भी तो हो सकता है।
0: जो लोग उस निराकार से नहीं डरते उन्हें तो पाप करने में ही आनंद आता है।
1: मेरे मन में भी ज्योति का भविष्य जानने के बाद पाप आ गया है।
0: कैसा पाप?
1: अगर हम ज्योति की शादी जीतू के साथ कर दें तो?
0: जीतू के साथ? ये ठीक नहीं होगा। ज्योति के साथ भी और जीतू के साथ भी?
1: अरे ज्योति के साथ तो सही होगा। पंडित जी ने पहले पति के मरने का कहा है, दूसरे का थोड़ी।
0: कैसी बात करते हो, ये पाप होगा।
1: अगर लड़की का भविष्य देखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जीतू जैसे लड़के का क्या भविष्य? क्या सोच रही हो? बोलो क्या कहती हो?
0: पर वो ज्योति राजी हो जाएगी?
1: क्यों नहीं होगी, प्रेम करती है उससे।
0: लेकिन वो तो मना कर रही थी।
1: झूठ बोलती है, देखती नहीं रोज किसी ना किसी बहाने से उसका नाम लेती रहती है।
0: हाँ वो तो, मगर ज्योति को ऐसा नहीं लगेगा कि पापा ये जानते हैं कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, फिर भी शादी कर रहे हैं।
1: वो सब मेरे ऊपर छोड़ो, सुनो।
0: हाँ?
1: अब चैन से सो जाओ, सो जाओ।

0: अच्छा मम्मी, अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, बाय।
1: अरे ज्योति, जा कहाँ रही हो? ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
2: अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही है।
1: अरे वाह, आज तो हमारी बिटिया बड़ी स्मार्ट लग रही है, है? कहीं रास्ते में जीतू ना मिल जाए।
0: उस पागल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी मिल सकता है।
2: वैसे बुरा लड़का नहीं है जीतू, बस शराब की बुरी आदत है। अगर हम तुम्हारी शादी उससे कर भी देते तो क्या तुम एक शराबी के साथ जीवन गुजार सकती थी?
0: पापा, आप ही ने तो एक बार कहा था ना कि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। हो सकता है कि वो शादी के बाद शराब छोड़ भी देता, और बाद में क्या, उसने तो सच में मेरी खातिर शराब छोड़ दी है। पर किसी को यकीन है, किसी को नहीं।
1: अगर तुमको उस पर पूरा विश्वास है तो भाई शादी में क्या बुराई है? क्यों
2: तो देरी क्यों करते हो जी, चलो मिलते हैं उसके घर वालों से।
0: पर पापा, आप तो उन पंडित जी की बात पर विश्वास करते हैं ना, शादी के बाद मैं विधवा हो गई तो?
2: ऐसा नहीं कहते बेटा, इन्होंने पंडित जी से बात कर ली है और इस दुर्घटना का समाधान मिल गया है।
1: हाँ, वो खर्चा थोड़ा ज्यादा है, पर क्या करें, उठा लेंगे हम।
2: वैसे भी बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है।
0: सच माँ, मम्मी, तो ये खुशखबरी मैं जाकर जीतू को सुना दूँ?
1: हाँ हाँ सुना दो।
0: वो मुझे भी रंगमहल पर ही खड़ा मिलेगा।
2: हाँ बेटा बोल दे, और कहना हम लोग कल उसके घर आ रहे हैं।
1: मगर वो दारू पिए हुए नहीं मिलना चाहिए।
0: ओहो पापा, बोला ना, उसने दारू पीना बंद कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा।

0: माँ
1: ज्योति बेटा,
2: अरे कितना रोएगी, चलना आप।
3: जी तू सही कह रहा है जी, देखो ना कितनी देर हो गई है। समधी जी अब आज्ञा दीजिए।
4: जी समधी जी, आप ही की बच्ची है,
1: दिल का टुकड़ा है हमारे, जरा ध्यान दीजिएगा समधी जी।
2: अरे हम भी अपने दिल में ही रखेंगे ससुर जी, देखता हूँ कैसे बाहर निकलती है।
3: चलो बेटा चलो, चले जरा दोस्तों के साथ बैठ गया था, हो जाता है।
4: क्यों नहीं क्यों नहीं, खुशी का माहौल है ना, थोड़ा एंजॉय तो करना ही चाहिए।
1: जाओ बेटा जाओ।
0: माँ
1: ज्योति बेटा,
2: ओ माय गॉड कितना रोती है, अरे क्या गोद में उठा के ले जाऊं तुझे?
0: नहीं जी, चलती हूँ।
2: चलो।

0: कोई खबर आई क्या?
1: क्या रोज रोज एक ही बात पूछते हो?
0: अरे मैं तो ये कह रहा था, मालवीय जी है ना अपने?
1: हाँ हाँ।
0: अरे जीतू की कोई खबर आ जाए तो हम उनसे बात करें।
1: वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जाकर पता तो लगाओ हमारी ज्योति है कैसी। उधर से कोई खबर आ नहीं रही और ना ही जीतू से लेकर आ रहा है।
0: तुमने फोन लगाया था?
1: कई बार लगाया, लड़की से कोई बात ही नहीं करने देता। जीतू उठाता है तो कहता है अभी ज्योति हमारे लिए मुर्गा बना रही है, बाद में बात करवाते हैं। गुप्ता जी फोन उठाते हैं तो वो भी पिए हुए नजर आते हैं।
0: अरे अब क्या करें हम लोग?
1: अब अरे हाँ, वो पंडित जी को बुलवाओ ना, उनसे कहो आपने कहा था लड़का शादी होते ही निपट जाएगा, ये कैसी भविष्यवाणी की, आज एक हफ्ता हो गया।
0: लेकिन उन पंडित जी को तो शर्मा जी ने पहुंचाया था, बड़ी तारीफ की थी उनकी।
1: तो उन्हें बुलवाओ, फोन करो शर्मा जी को।
0: हाँ करता हूँ, रुको जरा। हेलो शर्मा जी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ जी। काम तो कोई खास नहीं है, वो पंडित दीनदयाल जी को बुलवाना था। नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। जी जी जी जी जी शुक्रिया।
1: क्या बोले?
0: आते हैं थोड़ी देर में। बोले पंडित जी के बारे में कोई भी गंदा विचार मन में मत लाना, पाप लगेगा, वो तो अंतर्यामी हैं।
1: हाँ लगते तो थे, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?
0: अरे कभी कभी दुर्घटना भी समय ले लेती है।
1: हो सकता है ज्योति ने कोई उतारा कर लिया हो।
0: लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ज्योति फोन क्यों नहीं कर रही है।
2: मम्मी फोन करने की क्या जरूरत है, हम खुद ही जो आ गए।
1: अरे ज्योति
2: कैसी हो माँ?
1: ठीक हूँ, तुम कैसी हो ज्योति?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बेटा जिस दिन से तुम्हारी विदाई हुई है एक बार भी फोन नहीं किया।
2: मम्मी टाइम ही नहीं मिलता था, और आप तो समझ सकती हो ना कितने काम होते हैं घर में।
3: ससुर जी को मेरा नमस्कार और सासू जी को प्रणाम। ससुर जी बेचारी बहुत काम करती है, कभी बोटिंग, कभी जू, कभी सैर सपाटा।
1: क्या बड़बड़ा रहा है ये?
0: पीए में आदमी ऐसी ही बातें करता है।
1: तू तो कहती थी छोड़ दी इसने।
2: हाँ मम्मी छोड़ दी है।
0: फिर ये क्या है?
2: वो तो मैरिज एंजॉय करने के लिए कभी कभार लीजिए, पंडित जी भी आ गए। प्रणाम पंडित जी।
4: चुप चुप जियो बिटिया, हो गया तुम्हारा विवाह।
3: जी आशीर्वाद है आपका।
4: तुम मदिरा का सेवन करते हो पुत्र?
3: जी कभी कभी गम भुलाने के लिए।
4: तो गम मदिरा से भुला दिया जाता है?
3: नहीं, कभी कभी खुशी में भी पी लिया करता हूँ।
1: कितना ढीठ है, कैसे गुजार रही है तू इसके साथ?
2: बस ऐसे ही माँ।
4: बेटा दारू पीना बहुत ही बुरी बात है।
3: बात ही है ना पंडित जी, बुरा तो नहीं।
4: अरे वो प्रताप जी कहिए किस लिए बुलवाया था आपने?
0: जी वो बात ये है पंडित जी की।
3: क्या बात है ससुर जी, बोलिए बोलिए ना, दामाद है हम आखिर आपके।
1: पंडित जी कुछ नाश्ता वाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए।
4: अरे नहीं नहीं रहने दो, तुम तो काम बताओ किस लिए बुलवाया है।
3: अब बोल भी दो ससुर जी, सब घर के ही तो लोग हैं अपने।
4: अरे ये कभी नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ सुनिए। प्रताप जी जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा इन दोनों के साथ कभी कोई घटना नहीं हो सकती, और प्रेम से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है जो इन दोनों में एक दूसरे के प्रति पाई जाती है। अरे प्रेम है तो ईश्वर है, संबंध है, परिवार है, इज्जत है। प्रेम ही था जिसने जीतों की शराब छुड़वा दी।
0: पंडित जी ये क्या कह रहे हैं आप?
4: हाँ इसकी दारू छूटने के बाद इसका बाप कितने बार अपने लड़के के लिए आपकी लड़की का हाथ मांगने आया, मगर आपने इस पर ना इसके पिता पर कभी विश्वास किया, लेकिन मेरी भविष्यवाणी पर जरूर विश्वास कर लिया।
1: आपको ये सब कैसे मालूम हुआ?
4: अरे हमें ही तो सब पता है। जीतू को जब ये पता चला कि शराब के कारण उसे क्या क्या खोना पड़ रहा है,
5: तो मैंने निश्चय कर लिया मम्मी जी, मेरा परिवार मुझसे दूर होता जा रहा था, अच्छे दोस्त कटने लगे थे, लीवर में शिकायत होने लगी थी, नशे में अपने

0: कोई भी काम को सही अंजाम नहीं दे पा रहा था। भविष्य में मंजिल का कोई पता ही नहीं था। कहाँ जा रहा हूँ, पैसे का नुकसान अलग, सबसे बड़ी बात मुझसे मेरा प्यार छूटा जा रहा था।
1: हाँ पापा, इन्होंने सच में शराब बंद कर दी है। मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था वैसा मिल गया। अरे, अब पंडित जी की तरफ क्या देख रहे हैं आप?
2: आ जाइए पंडित जी, आप भी अपने असली रूप में। हाँ बेटे, ये लो, ये रही मेरी दाढ़ी।
3: अरे,
2: और ये रही मेरी मूछे।
3: मूछे?
2: आप संदीप जी? आप थे पंडित जी? आप?
3: हाँ भाई,
1: पंडित जी आप।
2: क्या करते, बच्चों की खातिर हम भी इनकी साजिश का हिस्सा बन गए। आप लोग तो किसी भी हालत में राजी नहीं थे ना?
3: ठीक ही रहा, अंधविश्वास की पट्टी हमारे दिमाग से भी हट गई।
4: भाई साहब, हम शर्मिंदा हैं, हमें क्षमा करें। हमें विश्वास ही नहीं था कि रोज का पीने वाला अचानक इतना बदल जाएगा।
0: मम्मी पापा, अब हमें बस आपका आशीर्वाद।

0: अभी आप सुन रहे थे वसीम खान का लिखा नाटक बन गया जीतू जेंटलमैन। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। ऑटो वाला फारूख अहमद, पंडित और गुप्ता की भूमिका निभा रहे थे राकेश जैमिनी, प्रताप संजय मेहता, माया दीप्ति अग्निहोत्री, ज्योति कंचन राजानी और जीतू थे अमित रिछारिया। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे वसीम खान द्वारा लिखित नाटक जीतू बन गया जेंटलमैन, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

होता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण दिखी

दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, न

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।

0: जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड नई पुरानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में पंडित गिरिराज के सितार वादन का आनंद लीजिए। राग है रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आपने आनंद लिया पंडित गिरिराज के द्वारा सितार वादन का, और राग था रागेश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram, and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy's size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, arrived in New Delhi this evening to participate in the meeting of the foreign ministers of the BRICS member country. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 71 for 1 in 7.1 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field after rain and a wet outfield delayed the start of the match. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze at the Asian Senior Championship in Gandhinagar today. And that is the end of this news bulletin.

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात्रि के 11:10 बजे